मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 10 जुलाई 2026 इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्रम में अब लीजिए प्रस्तुत है अनूप जलोटा व साथियों की आवाज़ में ये भजन।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ये भजन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के क्रम में लीजिए प्रस्तुत है गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की आवाज़ में ये भजन।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए लक्ष्मी शंकर की आवाज़ में ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं मौसम व साथियों की आवाज़ में इस भजन के साथ।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत लीजिए सुनिए स्थित प्रज्ञ विषय पर स्वामी आत्मानंद के विचार।

0: हमारे धर्म ग्रंथों में आत्म प्रबुद्ध तथा आत्मज्ञानी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है तथा वहां विस्तार से उसके लक्षणों की चर्चा की गई है, किंतु अनेक व्यक्ति गीता तथा अन्य धर्म ग्रंथों में स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताओं को पढ़कर ऐसा समझते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष मानो पाषाण या जड़वत वस्तु हो जिसमें कोई चेतना ना हो। वह सुख दुख शीत उष्ण में अविकारी रहता है। वे यह सोचते हैं कि क्या मनुष्य की ऐसी स्थिति संभव है, और यदि है भी तो क्या वह उपादेय है? फिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और पागल में फर्क ही क्या रहा? असल में हमारे धर्म ग्रंथों में स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो गुण बताए गए हैं उनकी प्राप्ति जीवन में संभव है, पर वह कोई जड़ अवस्था नहीं है। वहां पर चैतन्य अत्यंत तीव्र रूप से स्पंदित होता है। जो लक्षण गीता में स्थित प्रज्ञ के बताए गए हैं वे उस पुरुष के मनोभाव के बाहरी प्रकाश हैं। इस स्थिति को पहुंचा हुआ व्यक्ति मानसिक संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। अनुकूल होने पर वह सुख से फूलता नहीं और प्रतिकूल होने पर वह उद्विग्न नहीं होता। तात्पर्य कि वह अनुकूलता प्रतिकूलता और इसी प्रकार सारे द्वंद्वों को प्रकृति का प्रवाह मानता है और वह स्वयं इस प्रवाह से अपने को परे समझता है एक साक्षी के रूप से, इसीलिए वह निर्द्वंद होता है। यह अवस्था सतत अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। विवेक और वैराग्य के अभ्यास से लोगों ने इस स्थिति को जीवन में प्राप्त किया है। यह अवस्था उपादेय भी है, बल्कि यूं कहें यही अवस्था समस्त रचनात्मक शक्ति की नींव है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लें। आप कोई मैच देख रहे हैं, आप दोनों दलों में से किसी की ओर नहीं हैं, आप निष्पक्ष दर्शक हैं। मैच देखने में आपको अधिक आनंद मिलेगा या किसी एक विशिष्ट दल वाले व्यक्ति को? निश्चय ही आपको किसी भी दल से संबंधित व्यक्ति आपके समान आनंद नहीं उठा सकता। वह तो अपने दल की हार जीत से चिंतित रहेगा। दूसरे दल के खिलाड़ी का सुंदर खेल उसे कोई आनंद नहीं दे सकेगा। पर आप निष्पक्ष हैं, निर्दलीय हैं, इसलिए दोनों ओर के खिलाड़ियों के खेल का आनंद उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में दोनों विपरीत अवस्थाओं का आनंद उठाता है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख के समान दुख में भी आनंद का प्रकाश देखता है। यह सत्य है कि यह बड़ी ऊंची अवस्था है, किंतु इसे एक असंभाव्य अवस्था नहीं कहा जा सकता। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ इसी अवस्था को जीवन के लक्ष्य के रूप में निर्देशित करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय था स्थित प्रज्ञ। आलेख एवं वाचन स्वर स्वामी आत्मानंद का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय है फसल चक्र क्यों और कैसे, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, हम सबकी कोशिश होती है कि हम जो भी फसल बोए उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले, और इसके लिए हम संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, और फसल में किसी कीट बीमारी का भी प्रकोप होता है तो उसकी भी रोकथाम के हम समय समय पर उपाय करते हैं। इन सब कृषि क्रियाओं के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीमित कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लें, क्योंकि भूमि हमारी बहुत कम है और इसी में हमें तकनीकी ढंग से खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति हम ठीक बनाए रखें, भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा को ना बिगड़ने दें। इसके लिए हमें अपने खेतों में हेर फेर करके ही फसलें बोना चाहिए, और इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, हम उनको भी समझ लें। उथली जड़ वाली फसल के बाद हमेशा गहरी जड़ वाली फसल को लेना चाहिए। इस प्रकार फसलें बोने से भूमि की अलग अलग परतों में पौधों के भोजन की समानता बनी रहेगी और उन्हें दोबारा उर्वरा शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता रहेगा। इसी तरह से अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद में अधिक पैदावार देने वाली फसल को लेना चाहिए। इससे पिछली फसल की बची हुई खाद का सदुपयोग हो जाता है और किसान भाइयों को अधिक खाद नहीं देनी पड़ती है। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल बोना चाहिए, क्योंकि फलीदार फसलों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिल जाता है। इन फसलों की कटाई के बाद बिना फलीदार फसलें बची हुई नाइट्रोजन का उपयोग कर लेती हैं। इसी प्रकार अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलों के बाद कम जल ग्रहण करने वाली फसल बोना चाहिए। ऐसा करने से जमीन में लगातार अधिक जल बने रहने के कारण वायु संचार और जीवाणुओं की क्रियाओं में भी बाधा पड़ती है, इससे बचा जा सकता है। आपको हम एक बात और बता दें कि किसान भाइयों कि अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साथ ही उपलब्ध कृषि साधनों के आधार पर भी हम फसलों का चुनाव करें। किसान भाइयों, अब हम आपको फसल चक्र अपनाने के क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में बताते हैं। फसल चक्र अपनाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, रोग और कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे अनावश्यक पौध संरक्षण दवाओं पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ खरपतवारों के नियंत्रण में भी मदद मिलती है।

0: फसलों को हेर फेर कर बोने से जमीन की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ने नहीं पाती है, जैविक दशा ठीक रहती है। फसलों की पैदावार बढ़ती है, फसल उत्पादन में लागत कम आती है, इसी तरह भूमि का कटाव भी कम होता है। किसान भाइयों के पास उपलब्ध साधनों जैसे बीज, खाद, पानी और श्रम का पूरी क्षमता के साथ उपयोग हो जाता है और साल भर आमदनी भी होती रहती है। फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय जो मुख्य कारक या प्रभाव डालने वाली बातें हैं, उनमें जलवायु, मिट्टी, सिंचाई का साधन, मजदूरों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताएं, बाजार की मांग, ये सब बातें फसल चक्र को प्रभावित करती हैं। खेती के प्रकार में यदि डेयरी फार्म है और जहां मुर्गी उद्योग मुख्य होता है, वहां फार्म का अधिकतर क्षेत्रफल चारे तथा दानों की फसलों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यदि हम फसलों को हेर फेर करके बोएंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी मिलेगी, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साल भर फसलें उगा करके भी हम कीट रोग से फसलों को बचाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनी आपने यह सामयिक चर्चा जिसका विषय था फसल चक्र क्यों और कैसे, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
4: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
5: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
4: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
5: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
4: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
5: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
4: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
6: ए भाई, जरा देख के चल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्म संतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति।

0: तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस् दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने

0: राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे टी20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की होगी। प्रातः 7:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कलाकार पंकज उदास की आवाज़ में कुछ गज़लें। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 9:00 आपके लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 9:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में कलाकार होंगी डॉक्टर संगीता शंकर और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वायलिन पर राग मियाँ की तोड़ी। तबले पर साथ देंगे विक्रम घोष। प्रातः 10:05 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रातः 11:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर 12:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा महिला सभा कार्यक्रम, प्रस्तुति छतरपुर जिले की होगी। दोपहर 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति छतरपुर जिले की होगी। दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा, प्रस्तुति छतरपुर जिले की होगी। दोपहर 2:00 आपके लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर पुनः फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 3:00 से साया 4:58 तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

साया चार बजकर क्षमा कीजिएगा साया पांच बजकर दो मिनट पर युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति छतरपुर जिले की होगी। साया पांच बजकर तैतीस मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से की जाएगी। साया छह बजे आकाशवाणी

के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे आत्मनिर्भर भारत योजना और नीम कोटेड यूरिया के फायदे। 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम राग रजनी।

0: इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब यहीं समाप्त होती है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। तीन देशों की इस यात्रा में श्री मोदी अपने अगले गंतव्य न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ये परियोजना उज्जैन, दक्षिण घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दो वर्षों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल एवं मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील में आयोजित एक किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

0: किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और ₹1,000 हर साल एक माह तक दिया जाएगा।
1: जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के एक साल तक ₹1,000 महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो ₹10 लाख अनुदान उसमें भी देने वाले हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब ₹20 प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। नई दिल्ली में CII राष्ट्रीय GCC बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2100 से अधिक GCC हैं जहाँ 23 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इन केंद्रों से हर साल लगभग $10,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र इंजीनियरिंग, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्त, उत्पाद तथा डिजाइन और डेटा विज्ञान को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन से 3-5 से हार मिली। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला इटली से होगा। वहीं भारत की पुरुष और महिला रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि भारत की महिला कंपाउंड टीम पहले ही फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में जनगणना से संबंधित हस्त पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसके लिए लगभग 150 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। वहीं इंदौर के ही किला भवन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेले का शुभारंभ हो गया है। खंडवा में आगामी 2 से 4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस में पार्श्व गायक विनोद राठौर को प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में कृषि विभाग ने अमानक बीज उपचार दवा बेचने के मामले में डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। झाबुआ, थांदला और पेटलावद में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगरमालवा जिला सहकारी विपणन संस्था को वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कटनी में आवास प्लस 2026 सर्वे के तहत तैयार वोटिंग लिस्ट के फाइनल करने और उसके वेरिफिकेशन के लिए 2 दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार साझा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया गाड़ासरई के बिरासनी शिशु विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नीमच जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तय मानकों के अनुरूप संचालन जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल ब्रिस्टल में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 9 विकेट से

हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज जीती है। वहीं मौसम में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और भोपाल में कल भी दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और होशंगाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं महात्मा गांधी द्वारा 13 सितंबर 1931 को अमेरिका के लिए प्रसारित वार्ता। ये वार्ता अगले दिन यानी 14 सितंबर 1931 को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी हुई। ये प्रसारण कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पर किंग्सले हॉल से किया गया था। ये एक अलिखित भाषण था जिसे रेडियो सुनने वाले लाखों लोगों ने सुना था। आइए आज सुनते हैं अमेरिका के लिए प्रसारित बापू की इस वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग। एक ऐसी शक्ति भी है जिसका अपना रचनात्मक महत्व है और जिसे राष्ट्र ने इस संघर्ष के दौरान प्रकट किया है। 1900 मील लंबे और 1500 मील चौड़े इस देश में बिखरे 7 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों अर्ध विभुक्षित मानवों के लिए हम जो इतनी अधिक चिंता कर रहे हैं वो इसी शक्ति का रूप है। ये बड़े दुख का विषय है कि ये सीधे सादे ग्रामीण लोग वर्ष के लगभग 6 महीने बेकार रहते हैं और इनमें उनका अपना कोई कसूर नहीं होता। ये बात बहुत पुरानी नहीं है कि इस देश का प्रत्येक गांव 2 मानवीय आवश्यकताओं भोजन और वस्त्र के मामले में आत्मनिर्भर हुआ करता था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पूरक धंधे को और यहाँ के लाखों कतइयों को समाप्त कर दिया। ये वही कतइये थे जो इतना बारीक सूत निकालते थे जितना बारीक सूत आज तक कोई आधुनिक यंत्र भी नहीं निकाल पाया है और जो अपनी कुशल अंगुलियों के कौशल के कारण सारी दुनिया में विख्यात थे। कंपनी ने ये सब कैसे किया इस विषय पर चुप रहना ही अच्छा होगा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन इन ग्रामवासी कतइयों ने पाया कि उनका वो नेक धंधा तो समाप्त हो चुका है। तब से भारत उत्तरोत्तर अधिकाधिक गरीब होता गया है। कोई इस चीज़ के खिलाफ चाहे जो दलील दे, लेकिन ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पूर्व ये ग्रामवासी बेकार नहीं थे और आज जो भी चाहे जाकर देख ले कि वे बेरोजगार हैं। इसलिए इस बात को समझने में किसी विशेष प्रयत्न या जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं थी कि यदि वे वर्ष के 6 महीने काम नहीं कर सकेंगे तो उन्हें भूखों ही रहना पड़ेगा। तब क्या मुझे इन करोड़ों अर्ध विभुक्षित मानवों की ओर से दुनिया से ये अनुरोध करने का अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र

स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्याकुल इस जाति के त्राण के लिए आगे आए। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 13 सितंबर 1931 को गांधी जी की अमेरिका के लिए प्रसारित वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग। गांधी चर्चा का समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की थी। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत पहला गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत सचिन देव बर्मन का है, आवाज़ लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है फिल्म छलिया से। इस गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ है मुकेश की। आइए सुनते हैं फिल्म छलिया का ये गीत।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
7: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
6: मतलब?
7: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
6: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
5: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। इस गीत को लिखा है नीरज ने, संगीत सचिन देव बर्मन साहब का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: फिल्म संगीत के प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म 16 साल से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस गीत को संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है हेमंत कुमार ने। आइए सुनते हैं फिल्म 16 साल से हेमंत कुमार की आवाज़ में ये कार्यक्रम का अगला गीत।

पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियाँ कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश

0: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समापन हम कर रहे हैं फिल्म हीरा पन्ना के इस गीत के साथ, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हीरा पन्ना से ये गीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुन रहे थे का?

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9

0: विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल

0: नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे प्रशिक्षण देकर, नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंकज उदास और हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार पंकज उदास की आवाज़ में गाई हुई कुछ गज़लें। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम में उन्हीं की आवाज़ में ये अगली गज़ल।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए
1: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान
0: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर शॉर्ट वेव पर एफएम पर विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in विविध भारती देश की सुरीली धड़कन
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768 एक बार फिर से सुनिए 9425702768 तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए। श्रोताओं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंकज उदास और हम सुनवा रहे हैं आपको इन्हीं की आवाज़ में कुछ गज़लें। कार्यक्रम सुगम संगीत अब अपने समापन की ओर है, तो लीजिए सुनिए कलाकार पंकज उदास की आवाज़ में कार्यक्रम की ये अंतिम गज़ल।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: सुरमई सवेरा इस अंतराल भोपाल है, 8:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत किसानों को एक साल तक हर माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन तेज बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आयुष तोमर। आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिस पर हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों टिका हुआ है। जी हां, विषय है कैच द रेन, अर्थात बारिश की हर बूंद को सहेजें। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत मानसून है। हर वर्ष करोड़ों लीटर वर्षा जल हमारे देश में बरसता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के नदियों और समुद्र में बह जाता है। दूसरी ओर गर्मियों में अनेक क्षेत्रों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में यदि हम वर्षा जल का संरक्षण करें तो जल संकट से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। इसी उद्देश्य से कैच द रेन अभियान चलाया गया है, जिसका संदेश है जहाँ भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, बारिश के पानी को बचाइए, सहेजिए। वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सरल और प्रभावी उपाय है। इसके अंतर्गत घरों, विद्यालयों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक भवनों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंकों में एकत्र किया जाता है या फिर उसे जमीन में उतारकर भूजल स्तर को बढ़ाया जाता है। इससे भविष्य के लिए जल उपलब्ध रहता है और भूजल का संरक्षण भी होता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। यदि प्रत्येक परिवार अपने घर में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करे, किसान अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब और मेड़बंदी अपनाए तथा विद्यालयों में बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जल का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। जब भूजल स्तर बढ़ता है तो पेड़ पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है, नदियाँ और तालाब अधिक समय तक जलयुक्त रहते हैं तथा जैव विविधता को भी लाभ मिलता है। इसके साथ ही सूखे जैसी परिस्थितियों का प्रभाव भी कम होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार समझें। पानी की प्रत्येक बूंद अमूल्य है। यदि हम आज जल बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे सकेंगे। आइए इस वर्षा ऋतु में हम सभी एक संकल्प लें कि बारिश की हर बूंद हम सहेजेंगे, हर बूंद हम बचाने का प्रयास करेंगे, जल का सम्मान करेंगे और कैच द रेन अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जल है तो कल है, अगर जल संरक्षित हो सकेगा तो कल भी सुरक्षित हो सकेगा। तो अपना कल सुरक्षित करने के लिए कैच द रेन अभियान के साथ जुड़िए और वर्षा के जल का संरक्षण ज़रूर कीजिए और जल का व्यर्थ उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद करते हैं साथियों आपको चर्चा पसंद आई होगी।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम सभी जानने जा रहे हैं, जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन को और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा सुव्यवस्थित कर पाएंगे। जी हाँ, हमें नशा मुक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के नशे में अपने जीवन को नहीं डालना चाहिए और अपने जीवन

को एक सकारात्मक और स्वस्थ पहल के साथ हर दिन शुरू करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके स्वस्थ, जागरूक और ऊर्जावान नागरिक होते हैं। ये हम सभी को भलीभांति मालूम है। जब समाज का युवा वर्ग स्वस्थ रहता है, तभी वह शिक्षा, विज्ञान, खेल, कृषि, उद्योग और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी क्षमता का योगदान दे पाता है। लेकिन आज नशे की बढ़ती प्रवृत्ति इस शक्ति को कमज़ोर कर रही है। नशा चाहे शराब का हो, तंबाकू का, गुटखे का, सिगरेट का या किसी अन्य मादक पदार्थ का, हर प्रकार का नशा शरीर, मन और परिवार पर गहरा दुष्प्रभाव डालता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा, शौक, दोस्तों के दबाव या तनाव से बचने के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत में बदल जाती है। फिर व्यक्ति नशे का नहीं बल्कि नशा व्यक्ति का मालिक बन जाता है। नशे का सबसे पहला असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि तंबाकू और धूम्रपान से कैंसर जैसी भयावह बीमारी होती है। फेफड़ों की गंभीर बीमारियां और हृदय रोगों का भी खतरा लगातार बढ़ता रहता है। अत्यधिक शराब का सेवन यकृत यानी लीवर को नुकसान पहुंचाता है तथा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। नशीले पदार्थों का सेवन मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, रिश्तों में तनाव बढ़ता है और कई बार घरेलू हिंसा तथा सामाजिक अपराध जैसी समस्याएं भी जन्म लेती हैं। जो धन बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार के विकास पर खर्च होना चाहिए, वे नशे की लत में व्यर्थ चला जाता है। आज के युवाओं के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि गलत संगति, सामाजिक दबाव से कैसे बचा जाए। कई बार केवल एक कोशिश अगर हम कर लें तो निश्चित ही हम अपने जीवन में एक सकारात्मक मोड़ को ला सकते हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि युवा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अच्छे मित्र चुने और अपने समय का सदुपयोग करें। संगीत, साहित्य, योग और रचनात्मक कार्यों को अपने जीवन में सहेजें। याद रखें, जो मित्र गलत मार्ग दिखाए वह असल मित्र नहीं होता। परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माता पिता बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से नशा आपके जीवन में आपकी मदद नहीं कर सकता। डांटने के बजाय विश्वास और सहयोग का वातावरण हमें हमेशा अपने घर में अपने बच्चों के साथ बनाकर रखना चाहिए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी समय समय पर नशा मुक्ति अभियान, जागरूकता रैलियां, निबंध, भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जाने भी चाहिए, ताकि युवा वर्ग इस खतरे को समय रहते समझ सके। यदि कोई व्यक्ति नशे की लत से ग्रस्त है तो उसे अपराधी नहीं बल्कि सहायता की आवश्यकता है। उचित परामर्श, चिकित्सा, परिवार का सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से नशे की लत पर विजय पाई जा सकती है। हमारे देश में विभिन्न सरकारी और सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना और उनका मनोबल बढ़ाना समाज का एक कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर ही जीवन के प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य का आधार है। इसलिए अपने शरीर और मन की रक्षा करना हमारा पहला दायित्व होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि ना केवल स्वयं को नशे से दूर रखेंगे बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ परिवार का निर्माण करता है और स्वस्थ परिवार मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अंत में केवल हम इतना ही कहेंगे कि नशा छोड़िए, जीवन जोड़िए, स्वास्थ्य अपनाइए, खुशियां बढ़ाइए। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत का निर्माण करें और उसमें अपना योगदान भी दें। उम्मीद करते हैं आप सभी को चर्चा पसंद आई होगी।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में समय है आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने का या आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करने का। सूचना संबंधित है आप सभी के लिए रोजगार से। रोजगार सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। इन्होंने एक अधिसूचना जारी करी है और अधिसूचना संबंधित है हवलदार इंस्ट्रक्टर के पदों से। पदों की कुल संख्या 209 है। 1 जुलाई 2026 के अनुसार आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके आवेदन 19 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और 9 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तो आप अपना आवेदन 9 जुलाई तक कर सकते हैं। परीक्षा तिथि आपको तत्पश्चात सूचित की जाएगी और एक सप्ताह पूर्व आपके परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। अगर आपसे आवेदन भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 16 जुलाई 2026 तक अपनी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदन शुल्क बहुत मामूली सा रखा गया है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क ₹25 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी ₹25 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए भी आवेदन शुल्क ₹25 है। शुल्क अदा करने का तरीका ऑनलाइन होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS के थ्रू आप आवेदन शुल्क अदा कर सकते हैं।

शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो कैंडिडेट या अभ्यर्थी जो भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास UPSSSC के द्वारा प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का स्कोर कार्ड पास के रूप में अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने क्लास 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा किया हो, ये शैक्षणिक अर्हताएँ रखी गई हैं। उम्मीद करते हैं आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, और इसके बारे में कोई भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए आवेदन कीजिए और आवेदन करने के साथ साथ कड़ा परिश्रम कर अपनी सफलता को भी सुनिश्चित कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर संगीता शंकर और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वायलिन पर राग मियाँ की तोड़ी। तबला पर साथ दे रहे हैं विक्रम घोष। लीजिए आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के तहत कलाकार थीं डॉक्टर संगीता शंकर और इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वायलिन पर राग मियां की तोड़ी। तबले पर साथ दिया विक्रम घोष ने।
1: बधाई हो दत्ता, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:59 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक नितिन गुप्ता का और वाचक सर अभिषेक कटियार का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मालवा की पहचान उसकी ठंडी हवाओं और सामान्य मौसम से रही है, लेकिन इस बार देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा झुलसाती गर्मी, आंधी और तूफान के बीच आसमान की तरफ टकटकी लगाए ही बिताया था। लेकिन आखिरकार मानसून की आमद ने अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का रुख अलग अलग रहा है। अब तक देवास में कुल 303 मिलीमीटर, वहीं टोंक खुर्द में 433, सोनकक्ष और हाट पिपलिया में 476 और 482 तथा बागली में 435 और उदयनगर में 445 तथा खातेगांव में सबसे अधिक 762 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष जिले में लगभग 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खातेगांव, कन्नौद और बागली जैसे क्षेत्रों में हर साल नर्मदा, क्षिप्रा, बागदी और कालीसिंध तथा लोदरी जैसी नदियों में उफान आने से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित कर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। श्रोताओं, आने वाले वर्षों में मालवा क्षेत्र में संभावित पेयजल संकट को भांपते हुए देवास जिले में एक अनूठा अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल को सहेजने के इस अभियान के तहत घरों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी पाइप के जरिए सीधे धरती के गर्भ में उतारा जा सके। ये अभियान हमारे कल को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के मोर्चे की अगर बात करें तो इन दिनों जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 तक डेंगू निरोधक माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर समझा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर घरों के अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टायरों के जमा पानी में ज्यादा पनपते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पशुपालकों की समृद्धि के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तीसरे चरण में विभागीय अमला उन पशुपालकों के घर घर पहुंच रहा है जिनके पास 3 से 4 गोवंश या भैंस वंश हैं। अधिकारी उन्हें नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सॉर्टेड सीमेन जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान भी पूरी तरह सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1800 बूथों के माध्यम से 1,84,645 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई हैं। ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ देवास की ग्राम पंचायत अगेरा में बीते दिनों एक भव्य जन सम्मेलन के माध्यम से किया गया, जहां ग्रामीणों को उनके अधिकारों और योजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खेत बचाओ अभियान के तहत पालनगर और

नागदा ग्राम पंचायतों में कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने, संतुलित उर्वरक उपयोग और कीट व्याधियों से फसलों को बचाने के गुर सिखाए गए। सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक बाधित भाई बहनों के लिए प्रदेशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम के तहत अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा सांकेतिक भाषा व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया। पिछले दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित दो दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व स्मृति संगीत समारोह में सुरों की अनूठी महफिल सजी। समारोह में पुणे की सानिया पाटणकर, इंदौर की पूर्वी निमगांवकर, दिल्ली के अविनाश कुमार के शास्त्रीय गायन और अतुल उपाध्याय व पंडित विवेक सोनार की वायलिन बांसुरी की जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको बता दें कि देवास में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी सम्पन्न हुई। वहीं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देवास प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत एक मिसाल बन रहा है। जिले के 3756 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल जगमगा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कुल 10 लाख यूनिट की कमी आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 42 किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए PPA जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में 73.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो श्रोताओं, ये थी देवास जिले की हलचल समेटे आज की जिले की चिट्ठी। अगले अंक में किसी और जिले की जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचक स्वर था अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। चलिए कार्यक्रम

संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव की। इसी के साथ मुकाम पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, बाबू बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और समस्त मुलाणी परिवार की। और धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म तेरे नाम से इस गीत की, जिसको लिखा है, जिसको संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं फिल्म तेरे नाम से इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है शास्त्री नगर बीड शहर से। किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल की, साथ ही साथ कमल पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से इस गीत की, जिसको लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। संगीत शांतनु मोइत्रा का है और आवाज़ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
4: सच?
3: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
4: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
3: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
4: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
3: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नई बस्ती गंज डुंडवारा से। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से, मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी की। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और आलौकिक चंसोलिया की। तहसील रोड गंज डुंडवारा से भी हमें एक फरमाइश आई है AH रही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील की।

और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के इस गीत की, जिसको लिखा है राहत इंदौरी ने, संगीत अनु मलिक का है और आवाज़ श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बीड शहर महाराष्ट्र से। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथेकी। इसी के साथ हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। फिल्म और

फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करते हैं। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है अमलता समरीन होम्स कटारा भोपाल से। योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय और कृष्णा भारतीय। न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय और श्रीमती ललिता भाई भारतीय की। पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म गदर से इस गीत की, जिसको लिखा है इस गीत को अपनी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ये गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, जो कि हमें प्राप्त हुई है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे और मायरा सुरोशे की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी की। इसके साथ फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नजिया नासिर, साजिद और शाहिद की। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म परिणीता से इस गीत की, जिसको अपने बोल दिए हैं स्वानंद किरकिरे ने, संगीतबद्ध किया है शांतनु मोइत्रा ने और आवाज़ दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की सहेली रेडियो श्रोता संघ आज़ाद रोड सनावत से। बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा मोहम्मद शादाब खत्री की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल खुदा की। इसी के साथ जनकपुरी सुरहानपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म इश्किया से इस गीत की, जिसको लिखा है गुलजार ने। संगीत विशाल भारद्वाज का है और आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

इसी के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे अम्बरीश कालेले का गिटार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने

0: व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 वर्ष में पूर्ण होगी, जिससे लगभग 35 लाख की आबादी और 62 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और ये ईंधन केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1 साल तक हर माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: ये बादल, ये बिजली, ये बारिश का मौसम, ये रिमझिम फुहारे, ये बूंदों की छमछम, ये सिसकी सी भरती बोझिल हवाएं, ये शाखों के पत्तों पे ठहरी सी शबनम। बारिश के इस सुहावने मौसम में स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल करें, हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। आपके फोन्स का हमें है इंतजार। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
3: सुनील कुमार खरे।
2: सुनील जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
3: इंदौर से।
2: इंदौर से क्या करते हैं सुनील जी?
3: मैं टीचर था।
2: अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं आप?
3: हाँ।
2: तो ये दूसरी पारी आपकी कैसी चल रही है?
3: ठीक चल रही है, बढ़िया मौज मस्ती।
2: चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी दूसरी पारी में एंजॉय कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, कुछ बताएंगे आप?
3: हाँ, हमारे परिवार में बच्ची है, बच्चा है
2: जी,
3: और पत्नी के अलावा बस बच्ची की शादी हो गई है, बच्चा सर्विस करता है।
2: अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी?
3: वो भी टीचर रही, वो भी रिटायर्ड हो गई।
2: वाह, दोनों शिक्षक हैं घर में, तो बहुत डिसिप्लिन का माहौल होगा आपके घर में।
3: हाँ, लगभग लगभग।
2: आज क्या सुनना चाहते हैं सुनील जी?
3: मैं अपना मनपसंद गाना वो साथ ही रहे मुकद्दर के सिकंदर का सुनना चाहता हूँ। सुनता रहा मैं हमेशा आपका ये कार्यक्रम, लेकिन पहली बार मैंने कॉल लगाया।
2: आज आपने पहली बार कॉल लगाया और आपका कॉल लग गया सुनील जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। नमस्कार।
3: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
0: राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मध्य प्रदेश सिवनी।
0: सिवनी से? राहुल जी, बारिश का मौसम चल रहा है।
1: हाँ, अभी मतलब रिमझिम बारिश हो रही है। अभी दो या तीन दिन पहले काफी तेज हुई थी, अभी तो कम हो रही रिमझिम, अभी धूप भी निकल जाती है।
0: जी, क्या करते हैं आप राहुल जी?
1: नेवी पर जॉब करता हूँ।
0: जॉब करते हैं तो अभी ऑफिस में हैं या घर में हैं?
1: अभी मेरा मतलब जो टाइमिंग है वो 1 बजे से जाने का।
0: अच्छा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जाने अनजाने का रहेगा इसमें, पिया पिया ओ पिया पिया तू चांद है पूनम का।
0: जाने तमन्ना का गीत है ये, पिया पिया ओ पिया।
1: हाँ, उदित नारायण की आवाज है ना।
0: जी जी, जी।
1: मैम आज किससे बात हो पा रही मेरी?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मैम दोस्त का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ जी बिल्कुल, लीजिए।
1: मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे विपिन कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: जी तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर अपने दोस्तों के साथ ये गीत। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी आपको, और धन्यवाद भी आपको। मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया दीदी, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रहे हैं इस समय आप बाबू यादव जी?
1: दीदी मैं दुकान पर हूँ इस समय, और मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है। बरसात हो, अभी साफ सुबह बारिश हुई थी
0: जी,
1: तो मौसम बढ़िया हुआ है।
0: तो मतलब एक साथ दोनों काम कर रहे हैं आप, दुकान भी संभाल रहे हैं और फोन इन प्रोग्राम में आपने कॉल भी लगा लिया।
1: हाँ दीदी, टाइम मिल गया था तो हमने कहा फोन लगा लें आपको।
0: देखिए, अपनी पसंद की जो बात होती है ना, उसके लिए इंसान वक्त निकाल ही लेता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ता है
0: जी, निकालना पड़ता है और निकल जाता है। और देखिए, आपने इतने शिद्दत से याद किया और फोन लगाया कि आपका फोन लग गया
1: जी।
0: जी आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी देखिए, मौसम बढ़िया है तो हमको एक गाना सुनवा दीजिए
0: जी। बताइए।
1: जुर्माना का है वो गाना, है ना, सावन के झूले पड़े हैं तुम चले आओ, लता जी ने गाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत मौसम के हिसाब से
0: जी। और सावन का महीना आने ही वाला है
1: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी अगर इजाजत है तो दो लाइनें भी कहना चाहूंगा
0: जी। बिल्कुल।
1: कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा नाम शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ।
0: वाह
1: दीदी, ये कुमार विश्वास जी ने हमारे शहर के बारे में कहा था।
0: अच्छा, तो आपको हाँ, कविताओं का शौक है?
1: जी जी जी, कविताओं और शेर व शायरी का शौक रखते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लीजिए सुनिए बाबू यादव जी अपनी पसंद पर फिल्म जुर्माना का ये खूबसूरत गीत।
1: नमस्कार दीदी आपको।
0: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, क्या हाल चाल है?
0: सब बढ़िया। कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बढ़िया है, चकाचक।
0: बात हमारी किन से हो रही है?
1: मनोज गुप्ता बागली।
0: मनोज गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है।
0: क्या कर रहे हैं इस समय मनोज जी?
1: दुकान में बैठा था मैम,
0: अच्छा,
1: फिर फोन ट्राई करा तो फोन लग गया।
0: बहुत बढ़िया। दुकान के साथ साथ आपने फोन मिलाया और आपका फोन लग गया, ये बहुत अच्छी बात है।
1: आप गाना सुना दीजिए मेरे को, फिल्म सुहाग का, अमिताभ बच्चन वाली।
0: फिल्म सुहाग का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कोई भी अच्छा सा सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सुहाग का ये गीत। नमस्कार।
1: ठीक है मैम, थैंक यू।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: जी अच्छी हूँ मैम।
0: क्या कर रही हैं?
1: बस पेपर पढ़ रही थी और फोन ट्राई कर रही थी।
0: कैसा है मौसम वहाँ इंदौर में जीनत जी?
1: मौसम बादल हो रहे हैं, बारिश का इंतजार है, कल भी चले गए यहाँ से बादल तो।
0: अच्छा, तो बारिश नहीं हुई?
1: जी बारिश तो नहीं हुई,
0: बस पहुंच ही रही होगी आप तक। तो लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत मौसम का और बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप।
1: जी मैं विजय पिक्चर है ना
0: जी।
1: बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी पिघल के आ, वो अलग।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने ये गीत। परिवार में कौन कौन है जीनत जी?
1: परिवार में तीन बच्चे, 21 साल के, 16 साल के और 13 साल के बेटे हैं तीनों।
0: पढ़ाई चल रही है तीनों की?
1: एक तो पापा के साथ जाते हैं जॉब पे और दो पढ़ाई
0: कर रहे हैं। तो आपका समय कैसे निकलता है दिन में?
1: समय काम निकाल के रेडियो तो चलता ही रहता है दिन भर, और थोड़ी देर अपने रेस्ट करती हूँ और गाने सुनती रहती हूँ। मैं का नाम लेना चाहूंगी बहनों का, मंदसौर में रहती हूँ।
0: जी बोलिए
1: जी। नूर भी है, अंजुम बाजी, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, बुशरा, रुखसाना, रोशन, ये बहने हैं जी, ये भी सुनती है।
0: बढ़िया, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपने मनपसंद गीत। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। आपने हमसे बात की, धन्यवाद।
1: जी

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किनसे बात हो रही है हमारी?
1: मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बारिश हो रही है, अभी तो 8 दिन हुआ बारिश हुई थी बदली।
0: अच्छा, तो बारिश में परेशानी हो रही है या अच्छा लग रहा है?
1: परेशानी है क्योंकि मक्का लगा रखी है अभी तो, क्योंकि बारिश अभी हो रही है हमारे इधर।
0: परिवार में कौन कौन है आपके गोपाल जी?
1: परिवार में मम्मी पापा है, भाई बहन सभी है, यही रहते हैं, मम्मी पापा के साथ ही रहते
0: जी, संयुक्त तो परिवार है
1: जी। भोपाल का मौसम कैसा है?
0: भोपाल का भी बहुत बढ़िया मौसम है
1: जी। आपके कार्यक्रम सुनते हैं?
0: आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन कौन से हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं आप
1: जी? समाचार वगैरह, फिल्म संगीत, हेलो फरमाइश सभी सुनते हैं।
0: अच्छा, मतलब रेडियो आपका चलता रहता है?
1: चलता रहता है हमारा तो रेडियो, तो मान लीजिए विविध भारती से भी जुड़ते हैं, विविध भारती कार्यक्रम भी सुनते हैं।
0: देखिए, ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है ना जिसमें जुड़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा काम नहीं रुकता है, काम के साथ साथ हम अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं, जानकारियाँ भी हमें मिलती रहती हैं। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं गोपाल जी?
1: वाला सुनवा दीजिए, राजा कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया की आवाज में ना।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। नमस्ते।

0: जोकर
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते
2: जी मैडम। नमस्ते।
1: नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
2: नीरज उपाध्याय अनूपपुर से।
1: नीरज उपाध्याय जी अनूपपुर से
2: जी।
1: कैसे हैं नीरज जी?
2: बढ़िया मैम, बारिश का आनंद ले रहे हैं। मानसून सक्रिय हो चुका हमारे अनूपपुर में, बारिश हो रही है हमारे यहाँ
1: जी। क्या करते हैं नीरज जी?
2: मैं मैम हो गया प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
1: बहुत बढ़िया, सुरक्षा का कार्य आप करते हैं।
2: गोल माइंस का क्षेत्र है अपना
1: जी, तो इसमें तो शिफ्ट होती होंगी नीरज जी, शिफ्ट वाइज होता होगा आपका काम?
2: हाँ, तीनों शिफ्ट रहती है, नाइट में रहती है।
1: अच्छा, तो मैनेज हो जाता है बढ़िया से?
2: हाँ मैम हो गया, मैनेज करना पड़ता है
1: जी।
2: क्या है, बच्चे को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है, तो उनको भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है इस समय। उसके हिसाब से अपना ड्यूटी भी करना पड़ता है
1: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नीरज जी। अब अपनी जी पसंद बताइए, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
2: मैम किशोर कुमार की आवाज़ पे गाना है रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए बाल, वही मैडम सुना दीजिए गाना
1: जी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत। नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो,
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
0: नमस्ते मैम, मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
1: नमस्ते नंदिनी जी, कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रही हैं इस समय नंदिनी जी?
0: इस समय मैं बस बैठी थी और कॉल ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा बस आपसे बात कर ली जाए थोड़ी सी,
1: बहुत अच्छा, और आपका कॉल लग भी गया।
0: क्योंकि
1: नंदिनी जी, परिवार में कौन कौन है आपके?
0: हमारी मम्मी है, पापा है, दो भाई हैं।
1: समय कैसे निकालती हैं आप अपना दिन का?
0: दिन का समय देखो, जैसे कि हम जैसे अब ये है लाइव प्रोग्राम आता है वो सुन लेते हैं, और क्रिकेट देखती हूँ और मूवीज वगैरह भी देखती हूँ मैं।
1: अच्छा, मूवीज का शौक है आपको,
0: जी
1: खेल का भी शौक है,
0: जी
1: देखना पसंद है या खेलती भी हैं?
0: खेलते भी हैं और मम्मी लोग के साथ भी थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, और उनके साथ भी ऐसे कोई गेम मतलब रहती है तो उनके साथ भी बैठ के खेलते रहते हैं।
1: घर के कामकाज में मदद करती हैं?
0: जी, तो वैसे काम रहता है खाने का तो खाना भी बनाते हैं।
1: तो
0: जी,
1: आज क्या सुनना चाहती हैं नंदिनी जी?
0: आज मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम,
1: हम तुम्हारे हैं सनम मूवी का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: टाइटल
1: टाइटल सॉन्ग।
0: जी, और डेडिकेट आपको करूंगी और कविता मैम को करूंगी और रानू दीदी को। जी,
1: इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं जानती हैं?
0: शाहरुख खान है, सलमान खान है, माधुरी दीक्षित है।
1: ये इसने प्रूव कर दिया कि आपको फिल्मों का शौक है। ठीक है
0: जी,
1: नंदिनी
0: अब
1: जी,
0: मूवी
1: आपसे बात
0: देखते हैं।
1: करके
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत।
0: ओके मैम, नमस्ते, बाय।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। ये आकाशवाणी भोपाल है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा किया। यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में खेल कूटनीति की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना नामांकन जिला कलेक्टर के माध्यम से 15 जुलाई तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। E85 ईंधन केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 2:30 बजे से मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं नाराज फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे एक आवाज दी है कुमार सानू ने, बोल हैं कतील शिफाई के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी, संतानी साखिया, और पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्विंसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बोक और पूरा खेड़ा परिवार। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और महाराष्ट्र से अभिजीत गहाणकर, सरिता गहाणकर, सिद्धांत गहाणकर, प्रिंस एकांश गहाणकर, सुखी शैलेश गहाणकर, नागपुर से वैशाली, श्वेता, सुमित और कौमी धोनी गहाणकर। हमारे इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मोहरा के इस गीत को सुनने की, जिसे आवाज़ दी है पंकज उधास और साधना सरगम ने। इंदिवर के बोल हैं और संगीत विजू शाह का।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ। बोल है फैज़ अनवर की, फिल्म का नाम है इम्तिहान और खूबसूरत आवाज़ें कुमार सानू और बेला की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मितेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और इसी गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले। तो सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में। बोल हैं मदन पाल के और श संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, जीशान वारसी बरेली से और करुला मुरादाबाद से, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। और एक और पत्र हमें मिला है औरंगाबाद से, राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का।

0: सलामी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे।
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आपको सूचना दे दें, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय या फिर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अस्पष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैनमस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने या फिर संबंधित सदस्य को ऐसा करने की रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा, भेदभाव फैलाने वाली संदेशों के प्रसारण को प्रसारित नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों या फिर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री की लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी आप बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित या विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस या फिर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। भाई वाह, अपनी खीसे निपोरते आपको कुछ सुनाने मेरे पास खड़े हैं विनय जैन।
1: एक साहब हमेशा अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बड़े विलंब से पहुंचा करते थे, हमेशा देर से आया करते थे, और हमेशा देर से आने के कारण उनका, उनके ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बन गया था कि ये साहब हमेशा देर से आते हैं। उनका कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से प्रारंभ होता था और उसके बाद शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी का समय हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा 10 की जगह कभी 10:30, तो कभी 11, तो कभी 11:30, तो कभी 12:15, तो कभी 12-12 बजे तक लगातार ऑफिस पहुंचा करते थे। और छुट्टी होने का समय 5 बजे ठीक एक्यूरेट हुआ करता था, बिल्कुल ठीक समय 5 बजे ऑफिस छूटने का समय। इसके लिए वो, उनकी अगर रिपोर्ट देखी जाती तो वो कभी ऑफिस से 4 बजे ही निकल जाते थे, कभी 3:30 बजे ही गायब, कभी 3 बजे ही ऑफिस से वापस। तो ये देख के बहुत लगातार काफ़ी दिनों से विलंब से आने के कारण और देर से आने के कारण उनके बॉस ने, उनके जो बड़े साहब हैं, उन्होंने उन्हें तलब किया और उसे अपने पास बुलाया और बोला, रामलाल आज आप दफ्तर लेट आए थे। जी हाँ साहब, थोड़ा लेट हो गया था। वो क्या कि थोड़ा सा वो लेट हो गया था साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ हाँ ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम कल भी लेट आए थे। हाँ साहब, वो लेट हो गया था, क्या कि वो लगातार मैं लेट आज जरूर हो रहा हूँ, लेकिन क्या कि मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, परिवार बाल बच्चों में फंस जाता हूँ साहब। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार 15 दिन से रोज लेट आते हो। तुम्हारा 10 बजे ऑफिस का टाइम है, कभी 11 आते हो, कभी 11:30, कभी 12:15, 12-12 बजे तक ऑफिस आए आप, और जाने का समय 5 बजे, तो कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2:30-2:30 बजे तक गए हो, दोनों टाइम लेट होते हो। बोले साहब क्या है कि दोनों टाइम लेट होना जमता नहीं है, इसलिए शुरू से जल्दी आता हूँ, बाद में पहले चला जाता हूँ। एक छोटा बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला, बच्चे जब बुजुर्गों से बात करते हैं और बुजुर्ग जब बच्चों से बात करते हैं तो किस तरह की हंसने हंसाने की बातें बन जाया करती हैं, वही बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुँचा और बोला, दादी दादी है ना, दादी है ना, तुम ना टें बोलो टें। अब बुजुर्ग लोग अगर बच्चों से बात करेंगे तो मूड ठीक है तो ठीक है, और अगर मूड ठीक नहीं है तो वो डांट भी दिया करते हैं। तो दादी माँ फौरन बच्चे से बोलती हैं, नहीं बोलते जाओ, हमारे टे बोलने से क्या होगा बेटा।
2: है ना दादी, तुम ना टे बोलोगी ना तो ना बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
3: शादी हो जाएगी बेटा, तेरे से ये कौन ने कहा कि बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
2: है ना दादी, है ना, कल ना बाबू कह रहे थे अम्मा से कि जो दिन ना मुन्ना की दादी टे बोल जाएगी इस दिन ना बड़े भैया की शादी कर देंगे।
1: गांव-गांव गली-गली लोगों को सरकार की तरफ से ये पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ये व्यंग आपके लिए विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जैसे ही गांव के लोगों ने पढ़ना शुरू किया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, किसी गांव वाले की कोई समझ में ज़्यादा नहीं आया। एक गांव वाला शिक्षा विभाग के एक नुमाइंदे के पास पहुँचा और बोला,
4: साहब जी क्या बात है, साहब जी ये गांव वाले हैं जे ऐसे नहीं समझेंगे, बेक समझ ही नहीं रहे फार एप्पल भी फार बाल।
1: नहीं समझ रहे तो क्या समझेंगे।
4: अब ऐसा है साहब जी, भी समझेंगे, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली, वे ऐसे समझ हैं।
1: अच्छा ऐसे समझेंगे।
4: हाँ साहब, वे गाँव आ रहे ना, वे ऐसे ही समझ हैं, ऐसे नहीं समझ हैं। शिक्षा विभाग के नुमाइंदों ने उसे उसी तरह मीडिया बनाकर लोगों को प्रचार करना शुरू किया, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली। लोग पढ़ने लगे और लोग समझने लगे। गांव में 99% लोग शिक्षित हो गए कि लोग साहब इस बात लाभ लेने लगे। शिक्षा विभाग का जो ये प्रयास था ये सार्थक सिद्ध हुआ और आसपास के गाँव वाले भी वहाँ पढ़ने आने लगे, काफ़ी लोग शिक्षित होने लगे।

0: विभाग तक खबर पहुंच गई कि फला गांव में 99% लोग शिक्षित हैं, तो एक अधिकारी वहां से भेजे गए जो कि ये मुआयना करने आए कि अगर ये बात सत्य है कि शिक्षा विभाग में यहां पर इस गांव में इतना कयामत करके दिखाया है और यहां के लोग शिक्षित हुए हैं, तो एक शिक्षा केंद्र यहां खोल दिया जाए और आसपास के 40 गाँव में 40 ब्रांच डाल दी जाए। एक बड़े साहब आ गए और एक साहब को खड़ा करके ब्लैक बोर्ड में सी लिख दिया और बोला कि बताइए दादाजी ये क्या लिखा है। दादाजी फौरन बोले अब बेटा जैसी लिखो है सी फार चंदू की घर बारी। एक माताराम 60-65 साल की बैठी थी, उनको बोला माताराम पढ़े लिखी हो?
1: अब बेटा पढ़े पढ़े हैं, लिखे तो नहीं है।
0: ठीक है पढ़ी पढ़ी हो तो कम से कम पढ़ के तो बता सकती हूँ क्या लिखो है।
1: हाँ भैया थोड़ी बहुत तो बता ही सकत है।
0: ब्लैक बोर्ड में डी लिख दिया, बोला बताओ माताजी ये क्या लिखा है। माताजी फौरन बोली
1: हाँ बेटा या डी लिखो है डी फार डब्बू की घर बारी।
0: एक दादा 60 साल की लगभग उम्र के चश्मा लगाए बैठे थे, ब्लैक बोर्ड में बड़े साहब ने डब्लू लिख दिया और दादा से बोला डब्लू दिखा के कि दादा जे बताओ जे का लिखा है। अब डब्लू देख के दादा चमक गए, चश्मा उतारा फिर लगाए उतारा फिर लगाए। 2 सेकंड बाद फौरन जवाब दिया दादाजी ने
2: बेटा जो देखा तो मुन्ना की घरवारी रही है मगर जा समझ में नहीं आ रहा कि जो उल्टी का ठाणी।
3: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक छोटे से प्यारे से गांव में एक अदालत नाम का नाटक खेला जाना था। सभी गांव वालों ने अभ्यास किया 1-2 महीने, तो अदालत नाम उस नाटक का रख दिया गया। उसमें मुख्य कलाकार का जो रोल था वो था वकील का, लेकिन जो वकील का रोल कर रहे थे वो वास्तव में वकील थे नहीं, वो तो एक छोटी सी किराने की दुकान के मालिक थे। तो साहब प्रैक्टिस हुई, 26 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 26 तारीख की शाम को 7:30 बजे ये अदालत नाम का नाटक खेला जाएगा रामलीला के मैदान में। चलिए ठीक है साहब, सभी लोगों को मालूम हो गया कि अदालत नाम का नाटक खेला जाना है। अब 25 तारीख आ गई, दिन भर अभ्यास हुआ, 25 की रात भर अभ्यास हुआ, अभ्यास ही अभ्यास। कि जो कलाकार वकील का रोल कर रहे थे वो किराने वाले, उनकी सास की डेथ हो जाती है, प्राणांत हो जाता है उनका, अब क्या किया जाए। शाम को नाटक है, सुबह घर में ये नाटक हो गया, तो जो कलाकार थे जो वकील का रोल कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टर महोदय को यानी उस अदालत नाम के नाटक के डायरेक्टर महोदय को समझा दिया कि साहब ऐसा है हमारी सास की तो डेथ हो गई है, हम तो आ ना पाएंगे, तो आप एक काम करिएगा कि एक कलाकार की आवश्यकता कहीं से आपको पड़ेगी उसकी व्यवस्था आप कर लें क्योंकि हम नाटक में रोल नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर बेचारा बड़ा परेशान, ओहो ये कैसे कह रहे हो कलाकार, हम 2-4 घंटे में कहाँ से किसी कलाकार की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने तक अभ्यास किया है, अब 4 घंटे में हम कौन सा कलाकार कहाँ से किया जाए। तो कलाकार ने तो बोल दिया नहीं भाई नहीं, हम तो रोल करेंगे नहीं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करिए। ठीक है साहब, मरता क्या ना करता, तो उस डायरेक्टर ने क्या किया, पूरे इलाके में पूरे गांव में क्या आजू बाजू वाले गांव में भी एक ढिंढोरा पिटवाया एक कलाकार की जरूरत का। वो क्या ढिंढोरा था, आज रात को जो नाटक होने वाला है गांव में उसका नाम है अदालत, उसमें एक कलाकार की जरूरत है, एक कलाकार की जरूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस नाटक में रोल करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो आज दोपहर को 2 बजे डायरेक्टर महोदय के घर में इंटरव्यू होने वाला है साक्षात्कार, आप लोग पधारें, जो जीत जाएगा जो सफल हो जाएगा उसको कलाकार बना दिया जाएगा, उसके बदले में उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, पेपरों में नाम छपेगा, टेलीविजन में फोटो आएगा। तो सब ऐसा अनाउंसमेंट हो गया। अब एक कलाकार की जरूरत, वहां एक पहुंचते या दो पहुंचते, वहां पहुंच गए 450, सबके सब पूरी लाइन में लगे हुए हैं एक के बाद एक। तो डायरेक्टर महोदय ने एक के बाद एक सबको बुलाया, जो सबसे पहली लाइन में सज्जन खड़े हुए थे वो कोई कलाकार तो थे नहीं, वो तो इसलिए पहुंचे थे कि 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, फोटो छपेगा पेपर में, टेलीविजन में नाम आएगा, फोटो आएगा, रेडियो वाले भी बोलेंगे वगैरह वगैरह, इस लालच में वो पहुंच गए। वो कौन थे, वो थे एक दवाई वाले। कौन से दवाई वाले? कोई मेडिकल स्टोर्स वाले या आयुर्वेद शाला वाले नहीं। आप लोगों ने देखा होगा

सड़कों पे रंग बिरंगी जड़ी बूटियां लेकर कोई सज्जन बेचते रहते हैं, वो ताकत की दवाइयां बेचते हैं, 125 रुपए की पुड़िया में शक्ति साली बनाने के लिए बड़ा दावा करते हैं, वो पहुंच गए। उन्होंने उस नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी बात कही, इंटरव्यू में भाग लिया, तो डायरेक्टर ने बोला अच्छा अंदर आइए, आप कोई हैं क्या हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायलॉग है, इसको आपको बोलना है। ये संवाद ऐसा है कि आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे उनका खून हो गया है, उनके खून को गोपाल राव ने किया है, ये चश्मदीद गवाह इस समय अदालत में खड़ा है, बस इतना सा संवाद है, इसको आपको बोलिए, अगर आपने अच्छा बोल दिया तो हम आपको अपने नाटक में ले लेंगे, और नहीं तो आपको कहेंगे कि आप जाओ। तो दवाई वाला खुश, अरे कहने जरा सी तो बात है यार, हम अपने स्टाइल से बोलते हैं। तो दवाई वाले ने अपने स्टाइल से किस तरह से बोला, देखिए डायलॉग ये है, आशा देवी मर गई हैं, रात को 12 बजे उनका खून हो गया है, और गोपाल ने इसको खून को कर दिया है, और किसी ने देखा वगैरह वगैरह, बस इतना सा डायलॉग। अब दवाई वाला अपने स्टाइल से बोलता है, किस तरह से बताएगा, वो बताएगा, वो खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, या कौन बताएगा, कहां बताएगा, कैसे बताएगा, अरे 125 रुपए का तावीज उसके छाती पे रख देगा, वो बताएगा, वो भगवान के नाम पे बताएगा, अरे खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है, अरे कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में केला लौकी भिंडी दियो लटकाए, जिसको जितना चाहिए काट काट दे जाए, वो बताएगा ये खून का मामला है मर्डर का मामला है कत्ल का मामला है। तो डायरेक्टर बोलता है हम आपको पहचान गए, सही बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अब बाहर निकल जाओ, 2-4 महीने के बाद आप आना। उनको तो साहब बाहर कर दिया गया। अब पहुंचे नंबर 2, जिनकी गिनती ना होती है कव्वालों में, बड़ा बढ़िया कव्वाली गाते हैं, वो भी अपने संगी साथियों के साथ, ढोलक तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, गाने वालों के साथ चले आए। तो देखिए किसने किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत की, आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे हैं, खून का मामला है, किसने खून किया, वो खूनी कहाँ खड़ा है, वगैरह वगैरह। अब इस डायलॉग को बोल रहा है कौन, एक कव्वाल अपनी स्टाइल से।

सफाई से धोए हैं अपने हाथ, तो कहा है कि कातिल ने किस सफाई से धोए हैं अपने हाथ कि वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। अरे मोम के शहर में, मोम के शहर में उस वक्त तबाही होगी। कहा है कि मोम

मेरी आशा रात के 12 बजे सो रही थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लखते जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी आशा सो रही थी रात के 12 बजे थी। मैंने अपनी नजर से, नजरिया से, नैना से, दो दो कटा से चांद को देखा।

इस इंसान ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल मर्डर कर दिया हो मेरे जज साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस कातिल को कम से कम दिन में 3 बार

0: मेरे डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कहले बहुत बढ़िया गाते साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए, लेकिन हम आपको ले नहीं पाएंगे अपने ड्रामे में, आप जा सकते हैं, चाय वाय के लिए आप चाहें तो पैसे ले लें। तो उनको पैसे चाय के दे दिए गए, उनको हटा दिया गया। अब पहुंचे कौन? एक ऐसे नेता जो अचानक वो स्पीकर में जो आवाज आ रही थी कि एक कलाकार की जरूरत की, उसको सुन के पहुंच गए और उनको भी वही डायलॉग दिया गया कि आशा देवी मर गई हैं और गोपाल ने उनको मारा है, अदालत में वो गोपाल खड़ा है, डायलॉग हो रहा है और सब बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब आपको अपने तरीके से बोलना है, आप अगर हमारे ड्रामे में रोल करना चाहते तो। नेता तो नेता बेचारे, कोई कामकाज तो वर्तमान में था नहीं उनके पास, तो चालू हो गए वो, उनको डायलॉग दे दिया गया। अब नेता तो नेता, बोलेंगे कैसा, वो वकील तो थे नहीं, वो तो अपने तरीके से वो चालू हो गए। किस तरीके से? प्यारे भाइयों, बहनों और साथियों, नहीं नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जज साहब, जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी की खास कर्मठ कार्यकर्ता, जिसने 24 घंटे समाज की सेवा करने में अपना खून पसीना लगा दिया, ऐसी सच्ची वफादार सभी की चहेती मिलनसार मृदुलभाषी आशा देवी का खून कर दिया गया है। आशा देवी का खून कर दिया गया है, जिसे विरोधी पार्टी वालों ने एक्सीडेंट का नाम दिया है, ये सरासर गलत है। आशा का खून मामूली नहीं था, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम खून का, खून की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। हम हड़ताल करेंगे अगर खून की जांच नहीं की गई, तो हम हड़ताल करेंगे। हम सभी से समर्थन जुटाने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, आशा देवी अमर रहे, आशा देवी आशा देवी आशा देवी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा इस तरह से वो ड्रामा आज तक नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी श्रोता को उस ड्रामे में रोल करना है तो हम आपको उनका पता बता देंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
4: भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई,

हम और आपको बाबू ए बाबू सुनता ही नहीं है, बेवकूफ आदमी। क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा। कहिए क्या बात है बाबू? एक रोटी दे दो। रोटी नहीं है, फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू। फटे पुराने कपड़े भी नहीं है बाबू। गेहूं के दाना दे दो बाबू। गेहूं का दाना भी नहीं है। पैसे दे दो बाबू। पैसे भी नहीं है। अच्छा साहब, आपके पास कटोरा है? क्यों बाबू, ऐसा है अगर है क्या? हाँ है, तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो। एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले? क्या है, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले? कहले साहब, जो आप कर रहे हो वही हम करते थे। अब चुनाव का माहौल चारों ओर फिर से गर्म हो रहा है। हर नेता को ये लग रहा है कि पुनः हमको अपनी सीट जीतना है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। इस ओर आपको ले चल रहे हैं कि कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं। अभी कुछ समय से नेताओं के साथ साथ राजनीति में किन्नर लोगों का भी प्रवेश हुआ, और किन्नर लोगों के प्रवेश से राजनीति में थोड़ा सा उथल पुथल हुई। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बड़ी तनाव भी आया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा हास्य और आनंदमय लिया। हिंदुस्तान है हमारा, हर किसी को स्वीकार किया जाता है, ये महानता है हमारे देश की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान में कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहे हैं, ये आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ कि जनसंपर्क के दौरान में कैसे हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं और आम सभाओं के वक्त कैसी हास्यप्रद बातें। देखिए, आज की आम सभा हमारी प्रारंभ होने जा रही है और हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रमुख नेता आने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखें और थोड़ी देर में हमारे नेताजी आ गया। देखिए, हमारे नेताजी आपके बीच में हैं। ए, ये बैठ जाओ। ये देखो यार भैया, ये विरोधी पार्टी वाले लोग ऐसा करते हैं यार। देखिए, हमारे नेताजी बहुत ही पावरफुल नेता हैं। इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि आज इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है इनके पास, ये सब जनता का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हाजिर हैं। और नेताजी, अब नेताजी को बड़ा खराब लग रहा है कि जी बोलते क्या जा रहे हैं कि जो कुछ भी है और जनता का है। अब वो धीरे से उनके कान, क्या बोल रहे हो यार, जो भी है जनता का। हाँ, हमारा कहने का आशय, आप लोग गलत ना समझें, जो कुछ भी है जनता का है। इसका कहने का आशय हमारा ये है कि आप लोगों ने जो कीमती वोट दी है, इसके कारण आज नेताजी हैं। नेताजी, अब ये जो बीच के भाषण देने वाले होते हैं, वो तारीफ करने वाले होते हैं, अब वो किस ढंग से उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं किंतु बोल कुछ और देते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं, और नेता को बुरा लगता है, कहीं कहीं कहीं कहीं अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे कैसे सारे बाजी से उनकी बातचीत चलती रहती है। ये क्रम आप अपने आप समझते जाओगे कि यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ काटा गया है। तो हमारे नेताजी देखिए, इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं कि आज ये जो कपड़े भी पहने हुए हैं, ये अपने नहीं पहने हुए हैं। यानी आप फिर गलत समझ गए होंगे, कपड़े अपने नहीं पहने, यानी कि ये
अमीर गरीब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के जिसका जिसने जो दे दिया कि ये आप स्वीकार कर लीजिए, नेताजी उसको स्वीकार कर लेते हैं कि समाजवाद है हमारा, हम किसी के साथ दो भाना नहीं रखते।

0: की, किस समाज का है, किस समाज का। ऐसे महान नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे महान नेता आपके बीच में, आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए, आप उनको वोट दीजिए और इनको जिताइए, ताकि हमारे यहाँ अब, और नेताजी अब इसके बाद जनसंपर्क के लिए जाएंगे। चलिए, नमस्कार जी, नेताजी आए हैं तो क्या करें भैया, नहीं करना कुछ नहीं है, अब खड़े हुए हैं तो हमसे पूछ के खड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं दादा, इस बार इनको जिताना है, पिछली बार भी तो नहीं को जिताया था भैया, इस बार भी जिताना है। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब ये कि इस बार फिर वोट देना। अरे यार भैया, पानी की समस्या हल नहीं हुई यार तुम्हारी। देखो दादा, पिछली बार इनने बोला था कि पानी आएगा, हाओ देखो इनने नल लगवा दिया ना, हाओ इस बार जिताओ नल में पानी भी आ जाएगा। अरे यार एकदम संजय कटौती हो जाती, लाइट गोल हो जाती, निकलो लोग लपाड़ा मार देते, पूछो कौन मार रहा है तो बोलते हैं कि भूत मार रहा है। कुछ टाइम तो सेट करा दो लाइट कटौती का दादा है। अब ऐसे गड्ढा कीचड़ होगा पूरो कॉलोनी में कि सब लड़का बच्चा एक से बिल्कुल दिखते हैं कीचड़ में, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। अब कम से कम एंटी व्यवस्था कर दो, अब बच्चा ही नहीं पहचान पा, जब पूरे मोहल्ला के बच्चों के मुंह धो जब अपनो बच्चा पहचान पा। अब आज बच्चों को धोखा हो रहा हो, कल को आदमियों को धोखा होने लगे तो लफड़ा ही कर रहा।
1: आगे बढ़े, महिला आई एक।
2: क्यों जय हैं क्या नेताजी?
0: हाँ हाँ जय हैं, जय हैं।
2: राम राम नेताजी।
0: राम राम, कहिए क्या बात है?
2: एक समस्या थी हमारे यहाँ।
0: बताइए बताइए क्या समस्या?
2: समस्या ये थी कि हमारी लैट्रिन 3 दिन से साफ नहीं।
0: तो नेताजी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
2: करना कुछ नहीं, आपको मुंह भर चलाना है।
0: आप लोग हंस देते हो, नेताओं से बुराई हम लोगों की हो जाती है।
3: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा का समापन प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट मैदान में खेल कूटनीति के ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब चार दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन चावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 वर्ष में पूरी होगी। इससे लगभग 35 लाख आबादी और 62 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा है कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1 साल तक हर माह 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए नामांकन 15 जुलाई तक ऑनलाइन कराया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये मैच दोपहर 3:30 बजे

0: होगा। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 1 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

बहनों, जीवन का हर पल अनुभव व ज्ञान का खजाना है। बस मुस्कुराकर हर दिन का स्वागत करें और अपनों के साथ खुशियां बांटें। बहनों, इन्हीं पंक्तियों के साथ महिला सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का सास्नेह नमस्कार। बहनों, हमारा पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जल, जंगल, धरती, आकाश, हवा और इसमें विचरण करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सबका संरक्षण करना पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसी दिशा में मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को प्रेरित करके पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करता है। बहनों, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मानता है कि भारतीय संस्कृति और जीवन परंपराएं स्वाभाविक रूप से सतत हैं। मिशन लाइफ का उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। मिशन लाइफ से तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। ये भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। मिशन लाइफ के कार्यों में एक स्थायी पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। बहनों, संरक्षण, संयम और पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली जीवन शैली को अपनाने और पहल परंपराओं, मूल्यों और प्रथाओं के महत्व पर ये जोर देती है। मिशन लाइफ व्यक्तिगत कल्याण और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देता है। ये टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के जरिए हासिल किया जाता है। बहनों, मिशन लाइफ का उद्देश्य पर्यावरण के लिए जिम्मेदार उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा करना है, ताकि उद्योग और बाजार तेजी से बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के अनुकूल ढल सके। इसका नीतिगत प्रभाव ये है कि ये टिकाऊ उपभोग और उत्पादन को हवा देकर मिशन लाइफ पर्यावरणीय कारणों का समर्थन करने के लिए सरकारी नीतियों और औद्योगिक प्रथाओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो बहनों, ये तो हमने आपसे चर्चा की मिशन लाइफ पर, और अब बहनों रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल भूपिंदर सिंह के स्वर में 1980 में आई फिल्म एक बार फिर से ये गीत। विनोद पांडे की शब्द रचना को संगीत से सजाया है रघुनाथ सेठ ने।

बहनों, हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं होती। नींव तो अपना खाका खुद खींचती है, उसे किसी इमारत के बनने की कवायद नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। कहा जाता है, घर को घर महिला ही बनाती है और महिलाओं से ही घर होता है। महिलाएं ना सिर्फ रिश्तों की सूत्रधार होती हैं, बल्कि वे त्योहारों, पारिवारिक परंपराओं और संस्कृति की संरक्षक भी होती हैं। महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और कहानियों को जीवंत रखती हैं। वे बच्चों को तीज त्योहारों का महत्व और परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी साझा करती हैं। बहनों, त्योहारों की तैयारी में घर की साफ सफाई, सजावट, व्यंजन पकवान बनाने से लेकर व्रत पूजा पाठ की तैयारी का काम महिलाएं ही संभालती हैं। बहनों, हमारे देश में करवा चौथ, हरताल का तीज और वट सावित्री जैसे व्रत महिलाएं रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। त्योहारों पर रिश्तेदारों को बुलाना, उनका स्वागत सत्कार करना, उपहार का आदान प्रदान कर प्यार स्नेह से रिश्तों को सींच कर मजबूती प्रदान करती हैं। महिलाएं विवादों को सुलझा कर घर के सभी सदस्यों को साथ लाती हैं। बड़ों का आदर करना और मिलजुल कर रहना जैसे अच्छे संस्कार महिलाएं ही सिखाती हैं, साथ ही बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण भी करती हैं। बहनों, त्योहारों में महिलाओं पर काम का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन कामकाजी महिलाओं को ऑफिस के काम के साथ साथ घर के अतिरिक्त कार्य के दबाव को भी संभालना और सहना पड़ता है। महिलाएं अपने परिवार की खुशी के लिए घर के दोहरे कार्य की जिम्मेदारी को भी सहर्ष स्वीकार कर हर कार्य का बखूबी निपटान करती हैं। त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं के वाहक के रूप में महिलाएं अग्रणी भूमिका में रही हैं। बहनों, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे त्योहार और पारिवारिक परंपराओं में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर। और बहनों, जीवन में रिश्ते होना ऊपर वाले की नियामत है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना वो हमारे हाथ में है। रिश्तों को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी

0: प्यार, विश्वास, भाईचारा, समझ और मुख्य है आपसी संवाद। संवाद होता रहेगा तो रिश्ते जिंदा रहेंगे, वरना खामोशी तो मुर्दों की निशानी है। परिवार में संवाद और महिलाओं की भूमिका, ये है आज की वार्ता का विषय और वार्ताकार हैं आभा खरे।
1: हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत पुरातन होते हुए भी चिर नूतन है, क्योंकि इसकी मान्यताएं आज के वैज्ञानिक युग में भी हमारे जीवन को सार्थक दिशा दिखाती हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है परिवार। संस्कृति को चैतन्य और जागृत रखने का दायित्व हमारे परिवारों का ही है। लेकिन परिवार है क्या साथियों? परिवार केवल व्यक्तियों के एकत्र रहने की व्यवस्था का नाम नहीं है। परिवार समाज की आधारशिला है। यह समाज की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक इकाई है। परिवार ही उत्तम मनुष्य के निर्माण की पाठशाला है। भारतीय संस्कृति में परिवार की परिभाषा में 3 या 4 पीढ़ियों का समावेश होता है, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई भाभी। ये सब एक ही छत के नीचे एक ही परिवार का हिस्सा होते हैं। आज भले ही संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन परिवार चाहे 3 पीढ़ियों का संयुक्त हो या एकल हो, उसके केंद्र स्थान पर महिला ही विराजमान होती है। परिवार, समाज तथा देश का अस्तित्व नारी से ही है। नारी के बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, हर रूप में परिवार की धुरी होती है। एक पुरानी कहावत है, बिन घर घरनी घर भूत का डेरा। मतलब जिस घर में परिवार के सदस्यों को महिलाओं के हाथ का बना भोजन न मिले, माँ की कोमल वाणी का गुंजन न हो, बहन का स्नेह युक्त स्पर्श न हो, बेटियों की किलकारी न गूंजती हो, वह घर घर नहीं होता। वह घर सोने का महल भी हो तो भी वीरान ही लगता है। साथियों, वैसे तो परिवार की अवधारणा और महत्व को विश्व के सभी देशों और सभी संस्कृतियों में प्रमुखता दी गई है, लेकिन भारतीय परिवारों जैसे आदर्श परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारतीय परिवारों की रचना कर्तव्य प्रधान है, जिसमें सभी सदस्य, चाहे वे पुरुष हों या फिर महिला, एक दूसरे के साथ सेवा भाव से रहते हैं। परिवार के सतत विकास और गुणवत्ता की कुंजी महिलाएं होती हैं, जो कि पत्नी, नेता, एक प्रशासक या पारिवारिक आय प्रबंधक की भूमिका में होती हैं। पर साथियों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वे माँ की निभाती हैं। माँ के रूप में परिवार की महिलाएं एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य सदस्य मानी जाती हैं। वे बच्चों की देखभाल में प्राथमिक मार्गदर्शक के रूप में होती हैं। वे परिवार में सद्भाव बनाए रखने में और घरेलू आयोजनों की रूपरेखा बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन करती हैं। वे परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जीवन साथी के कैरियर में सहयोग कर स्नेह और ध्यान का स्रोत बनती हैं। महिलाओं में भावनात्मक संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है। वे बच्चों के पालन पोषण में शैशव अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक उनका मार्गदर्शन करती हैं। यदि अच्छी संवाद वाली महिलाएं हैं तो वे बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। बच्चों की क्षमता और कौशल को वे शुरुआती दौर में ही विकसित कर सकती हैं। इसलिए माँ को बच्चे का प्रथम गुरु कहा जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच के विवादों को सुलझाने में भी महिलाएं मध्यस्थ और निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं घर के तनावपूर्ण माहौल को कम करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकती हैं। वे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। महिलाएं ही परिवार के सदस्यों को सुख दुख दोनों ही क्षणों में भावनात्मक सहारा प्रदान करती हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं परिवार के सदस्यों को तनाव, चिंता, व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में सहायता करती हैं। परिवार के सदस्य महिलाओं से संवाद करके अपनी अंदर की भड़ास को खत्म कर लेते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस घर में स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जिस घर में नारी प्रसन्नचित रहती है वह घर हमेशा फलता फूलता है। जैसे धुरी के कमजोर होने पर पहियों की गतिशीलता में कमी आ जाती है, या फिर धुरी न होने पर पहियों का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार महिलाओं के न होने पर परिवार कमजोर और समाज अस्तित्वहीन हो जाता है, तार तार होकर बिखर जाता है। आज के आधुनिक युग में बदलते परिवेश के साथ साथ अब कई महिलाएं अपने जीवन साथी के कैरियर में भी सहयोग दे रही हैं। अच्छी संवाद वाली महिलाएं बातचीत में भागीदार बनके अपने जीवन साथी को प्रोत्साहन दे सकती हैं, उनकी दिनचर्या और पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को संभालने में मदद कर सकती हैं। जीवन साथी के कैरियर में सहायक बनकर महिलाएं पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत कर सकती हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकती हैं। खुलकर संवाद और सहयोग साझा को स्थायी रूप से प्राप्त करने की कुंजी है। परिवार की परंपराओं और मूल्य

0: को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में महिलाओं का संवाद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे संस्कृति, संस्कारों, रीति रिवाजों और नैतिक मूल्यों के बारे में घर के सदस्यों को सिखाती हैं और परिवार की नींव मजबूत बनाती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में माँ का प्यार, दुलार और स्नेह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं के महत्व के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि एक पुरुष के शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अर्थ है केवल खुद को उपयोगी बनाना, लेकिन एक स्त्री के शिक्षित, समझदार और सुयोग्य होने का अर्थ है पूरे परिवार को सुसंस्कृत बनने का सुदृढ़ आधार मिलना। शिक्षा महिलाओं की स्थिति की बुनियाद का पहला पत्थर है जो उनसे बहुत निकटता से जुड़ा है। शिक्षा बौद्धिक क्षमता का विकास करती है जिससे महिलाओं को अपनी योग्यता और शक्ति का ज्ञान होता है। उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं जिससे वे आर्थिक मजबूती प्राप्त करने में सक्षम हो जाती हैं। महिलाएं परिवार के लिए वैसी ही हैं जैसे हृदय के लिए धड़कन। मुनि श्री प्रमाण सागर जी कहते हैं कि जो स्थान शरीर में नाड़ी का है वही स्थान समाज और परिवार में नारी का है। शरीर का यदि नाड़ी तंत्र फेल हो जाए या कमजोर हो जाए तो शरीर अचेत हो जाता है, और यदि परिवार का नारी तंत्र नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो परिवार अचेत हो जाता है। हमारा इतिहास बताता है कि ऐसी भी पत्नियां थीं जिन्होंने कालिदास जैसे महामूर्ख को महाकवि विद्वान बना दिया, श्रोणिक जैसे धर्म भ्रष्टों को धर्मात्मा बना दिया, तुलसीदास जी जैसे विषयी और लोलुपी कामी इंसान को परम राम भक्त बना दिया। स्त्री अपने व्यवहार से परिवार के सदस्यों के व्यवहार को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। स्त्री जब संतान को जन्म देती है तो माँ बनती है। माँ का रिश्ता बच्चे से उसके जन्म के 9 महीने पहले से ही बन जाता है। इसलिए जब वह संतान को जन्म देती है तो स्त्री के अंदर का मातृत्व एक आदर्श माँ के रूप में प्रकट होता है। एक योग्य संतान को जन्म देने में माँ की भूमिका सर्वोपरि है। हम सब जानते हैं कि कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। कौरव कुसंस्कारों के घोतक हैं, जबकि पांडव धर्म के प्रतीक हैं। कौरवों के अंदर संस्कार नहीं थे जबकि पांडव सुसंस्कृत और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इसका मूल कारण उनकी माताएं हैं, क्योंकि कौरवों की माता गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी लगा कर रखी थी। कौरवों को अपनी माता का प्रत्यक्ष सानिध्य और संप्रेषण मिला ही नहीं तो उनमें संस्कार कहाँ से आते। लेकिन पांडवों को हर विपत्ति काल में माता का सानिध्य और संप्रेषण मिलता रहा, इसलिए पांडव सदा संस्कारित बनकर मानवता के लिए आदर्श बन गए। अच्छी माँ बनना हर महिला की जिम्मेदारी है और अच्छी भार्या बनना हर महिला की जिम्मेदारी है। भार्या शब्द, इसमें भी एक गूढ़ अर्थ है, एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। भार्या का अर्थ है परिवार का भरण पोषण करने वाली, अर्थात घर की आंतरिक व्यवस्थाओं का संचालन एक स्त्री ही कर सकती है। ये गुण प्रकृति ने केवल एक स्त्री को ही दिया है। नारी आत्मीयता, ममता, वात्सल्य, स्नेह और प्रेम की मूर्ति बनकर परिवार में समरसता बनाए रखती है। परिवार में महिलाओं के संवाद और भूमिका पर जितना प्रकाश डाला जाए उतना ही कम है। परिवार में उनकी भूमिका का कोई और छोर नहीं है।
1: अभी आपने आभा खरे से वार्ता सुनी, परिवार में संवाद और महिलाओं की भूमिका। बहनों, परिवार और रिश्ते दोनों ही बिगड़ने लगते हैं जब समझदार मौन और न समझ बोलने लगते हैं। और बहनों, अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, तो चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में प्यासा सावन फिल्म से ये गीत। संतोष आनंद की रचना को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और बहनों इस प्यारे से गीत के बाद अब आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। बहनों यूं तो बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, परंतु बारिश के मौसम में बिजली या वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में ये ध्यान रखना जरूरी है कि बारिश से बचाव हेतु वृक्षों के नीचे समूह में खड़े ना हो, खासतौर पर ऊंचे बड़े पेड़ों से दूरी बनाकर रखें। बहनों खेतों में कार्य करने वाले किसान तत्काल सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं व खेतों के बीच में बने खलिहानों अथवा अन्य अस्थायी स्थलों पर बारिश से बचाव हेतु झुंड में खड़े होने से बचें। बहनों अपने पास किसी भी धातु की वस्तु जैसे खुरपी, फावड़ा, कुदाल, छाता आदि ना रखें, साथ ही धातु से बने खुले वाहन, ट्रैक्टर, जीप या अन्य वाहनों से दूर रहें। ऐसे घर जिसकी छत धातु से बनी हो उसमें शरण ना लें। बहनों जल अथवा जलीय क्षेत्रों में ना जाएं। यदि धान रोपने का कार्य चल रहा हो तो शासकीय निर्देशानुसार चेतावनी अवधि तक इस कार्य को स्थगित रखें। चेतावनी अवधि तक जल के संपर्क में आने वाले कोई भी कार्य ना

0: सामाजिक आयोजन नहीं करें व ऐसी जगह जाने से बचें। बहनों, शासन द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का पालन करें, लापरवाही ना करें, जीवन अनमोल है इसकी रक्षा करें व जरूरतमंद की मदद करें। तो बहनों, ये तो हमने आपको उपयोगी जानकारी दी आकाशीय बिजली से बचाव के बारे में, और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। बहनों, बारिश के मौसम में सेहत का ध्यान रखना खास जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सेहत के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें। इसलिए हमेशा छना हुआ, उबला या फिल्टर किया पानी पिए। बारिश में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, इसलिए हमेशा ताजा सुपाच्य हल्का गर्म भोजन करें। बहनों, बारिश में पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें। हरी सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल और मूंग की दाल जैसी हल्की चीजों का सेवन करें। बाहर की तली भुनी चीजें, चाट पकौड़ी खाने से बचें। बाजार में बिकने वाले कटे हुए फल सब्जियां ना खरीदें। फल सब्जियों को घर पर लाकर अच्छी तरह धोकर साफ कर ही उपयोग करें। बहनों, खाद्य सामग्री छूने और भोजन करने से पहले हाथों को अवश्य धोएं, और मच्छर मक्खी से बचाव के लिए कूलर, गमलों, नालियों में पानी जमा ना होने दें, नालियां ढककर रखें और समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए शरीर को ढकने वाले पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के खिड़की दरवाजों पर भी मच्छरदानी लगा कर रखें। बहनों, हमेशा अच्छी तरह से सूखे और साफ कपड़े पहनें। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से नहा लें। शरीर को अच्छी तरह पोंछ सुखा कर ही कपड़े पहनें। नमी रहने से त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। बहनों, बारिश में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर स्वस्थ और सेहतमंद रह सकते हैं। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी का, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। तो बहनों, बारिश का आनंद लीजिए चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए। और अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थीं महिला कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए रोमहृति चौरसिया की आवाज में लोकगीत। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अगला कार्यक्रम भी हमारा छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है और पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं अटल शुक्ला की आवाज़ में चंद भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अटल शुक्ला के गाए भजन। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेल दोनों देशों को जोड़ने की अनोखी ताकत रखते हैं। ये पहल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। दो साल में तैयार होने वाली इस परियोजना से 35 लाख आबादी लाभान्वित होगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान करेंगे। इस साल गेहूं खरीदी में प्रति क्विंटल कमी घटकर 70 ग्राम रह गई है, जो पिछले वर्षों से काफी कम है। बावजूद इसके कमी की भरपाई संबंधित समितियों और परिवहनकर्ताओं से कराई जाएगी। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति जिला कलेक्टर के माध्यम से पोर्टल पर 15 जुलाई तक नामांकन दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार को सीधे नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में 4,787 चालान बनाए गए और 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। 128 बसों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। इनमें से 22 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अब तक 234.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 10% अधिक है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने के उद्देश्य से जिले में कल से 10 दिवसीय स्कूल वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कल शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रन्नौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। खंडवा में स्वर सम्राट किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील में अमानक बीज के उपयोग से सोयाबीन फसल प्रभावित होने पर कृषि विभाग ने संबंधित डीलर और कंपनी संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने कल जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से।
1: और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई

0: गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ए विकसित भारत बाय 2047। नेशनल इंटीग्रेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन एज रिलेवेंट एज एवर। सरदार वल्लभभाई पटेल जी बिलीव्ड फॉर ए रिच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ए स्ट्रांग सेंटर वाज एसेंशियल टू मेंटेन यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल

0: @ न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात, तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ में इंदिवर की बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन से लोकेश मंटलोई और इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबलेर पाटिल राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

ग्राम सेगांव डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से हरीश चंद्र मंडलोई, छवि कुशवाहा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचौलिया हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को।

आप सुन रहे थे राम लक्ष्मण के संगीत से सजा हुआ गीत, बोल थे असद भोपाली की फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, और खूबसूरत आवाजें एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है तेरे नाम, समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, और इसी गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रमेश शिवाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमाली और उनका परिवार।

इस गीत के साथ ही फिल्म आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान करेंगे। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। प्रदेश की दो महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। और मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और 9:45 पर। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 7:21 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत, जिसमें होगी वार्ता मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं। विशेषज्ञ होंगे अमर भटकर और आपसे बातचीत करेंगे मनीष गजबिये। 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे अम्बरीश कालेली का गिटार वादन, राग होगा कावती। ये थे हमारे केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

दिन के 3:02 होने वाले हैं। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण बंद होता है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे हम कार्यक्रमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: सिर्फ इंसान नहीं बड़ी बेदर्दी के साथ
1: कत्ल मर्डर कर दिया हो मेरे जज साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस कातिल को कम से कम दिन में 3 बार फांसी

डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कहले बहुत बढ़िया गाते साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए लेकिन हम आपको ले नहीं पाएंगे अपने ड्रामे में, आप जा सकते हैं चाय वाय के लिए, आप चाहें तो पैसे ले लें। तो उनको पैसे चाय के दे दिए गए, उनको हटा दिया गया। अब पहुंचे कौन? एक ऐसे नेता जो अचानक वो स्पीकर में जो आवाज आ रही थी कि एक कलाकार की जरूरत की, उसको सुन के पहुंच गए और उनको भी वही डायलॉग दिया गया कि आशा देवी मर गई हैं और गोपाल ने उनको मारा है, अदालत में वो गोपाल खड़ा है, डायलॉग हो रहा है और सब बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब आपको अपने तरीके से बोलना है। आप अगर हमारे ड्रामे में रोल करना चाहते तो नेता, तो नेता बेचारे कोई कामकाज तो वर्तमान में था नहीं उनके पास, तो चालू हो गए वो, उनको डायलॉग दे दिया गया। अब नेता तो नेता, बोलेंगे कैसा, वो वकील तो थे नहीं, वो तो अपने तरीके से वो चालू हो गए। किस तरीके से? प्यारे भाइयों, बहनों और साथियों, सॉरी जज साहब, जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारी

0: पार्टी के खास कर्मठ कार्यकर्ता जिसने 24 घंटे समाज की सेवा करने में अपना खून पसीना लगा दिया, ऐसी सच्ची वफादार सभी की चहेती मिलनसार मृदुलभाषी आशा देवी का खून कर दिया गया है। आशा देवी का खून कर दिया गया है जिसे विरोधी पार्टी वालों ने एक्सीडेंट का नाम दिया है, ये सरासर गलत है। आशा का खून मामूली नहीं था, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम खून की निष्पक्ष जांच होना चाहिए ऐसा हम कहते हैं। हम हड़ताल करेंगे अगर खून की जांच नहीं की गई तो, हम हड़ताल करेंगे। हम सभी से समर्थन जुटाने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, आशा देवी अमर रहे, आशा देवी आशा देवी आशा देवी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा। इस तरह से वो ड्रामा आज तक नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी श्रोता को उस ड्रामे में रोल करना है तो हम आपको उनका पता बता देंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसीलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
4: भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबू ए बाबू, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
5: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
4: कहिए क्या बात है।
5: बाबू एक रोटी दे दो।
4: रोटी नहीं है।
5: फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू।
4: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है।
5: बाबू गेहूं के दाना दे दो बाबू।
4: गेहूं का दाना भी नहीं है।
5: पैसे दे दो बाबू।
4: पैसे भी नहीं है।
5: अच्छा साहब आपके पास कटोरा है?
4: क्यों
5: बाबू ऐसा है, अगर है क्या?
4: हाँ है,
5: तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
4: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले क्या है?
5: कुछ दे दो भगवान भला करेगा।
4: उनने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले?
5: कहले साहब जो आप कर रहे हैं वही हम करते थे।
4: अब चुनाव का माहौल चारों ओर फिर से गर्म हो रहा है। हर नेता को ये लग रहा है कि पुनः हमको अपनी सीट जीतना है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। इस ओर आपको ले चल रहे हैं कि कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं। अभी कुछ समय से नेताओं के साथ साथ राजनीति में किन्नर लोगों का भी प्रवेश हुआ और किन्नर लोगों के प्रवेश से राजनीति में थोड़ा सा उथल फुथल हुई। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बड़ी तनाव भी आया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा हास्य और आनंदमय लिया। हिंदुस्तान है हमारा, हर किसी को स्वीकार किया जाता है, ये महानता है हमारे देश की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान में कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहे हैं ये आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ कि जनसंपर्क के दौरान में कैसे हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं और आम सभाओं के वक्त कैसी हास्यप्रद बातें।
6: देखिए आज की आम सभा हमारी प्रारंभ होने जा रही है
5: और हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रमुख नेता आने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखें और थोड़ी देर में

0: हमारे हाँ नेताजी आ गया। आइए आइए। देखिए हमारे नेताजी आपके बीच में हैं। ए ये बैठ जाओ। ये देखो यार भैया, ये विरोधी पार्टी वाले लोग ऐसा करते हैं यार। देखिए हमारे नेताजी बहुत ही पावरफुल नेता हैं। इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि आज इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है इनके पास, ये सब जनता का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हाजिर हैं। और नेताजी, अब नेताजी को बड़ा खराब लग रहा है कि जी बोलते क्या जा रहे हैं कि जो कुछ भी है और जनता का है। अब वो धीरे से उनके कान, क्या बोल रहे हो यार, जो भी है जनता का। हाँ, हमारा कहने का आशय आप लोग गलत ना समझें, जो कुछ भी है जनता का है। इसका कहने का आशय हमारा ये है कि आप लोगों ने जो कीमती वोट दी है इसके कारण आज नेताजी हैं। नेताजी अब ये जो बीच के भाषण देने वाले होते हैं, वो तारीफ करने वाले होते हैं, अब वो किस ढंग से उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं किंतु बोल कुछ और देते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं और नेता को बुरा लगता है, कहीं कहीं कहीं कहीं अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे कैसे सारे बाजी से उनकी बातचीत चलती रहती, ये क्रम आप अपने आप समझते जाओगे कि यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ काटा गया है। तो हमारे नेताजी देखिए इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं कि आज ये जो कपड़े भी पहने हुए हैं ये अपने नहीं पहने हुए हैं। यानी आप फिर गलत समझ गए होंगे, कपड़े अपने नहीं पहने, यानी कि ये अमीर गरीब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के जिसका जिसने जो दे दिया कि ये आप स्वीकार कर लीजिए, नेताजी उसको स्वीकार कर लेते हैं कि समाजवाद है हमारा, हम किसी के साथ दो भाना नहीं रखते कि किस समाज का है किस समाज का। ऐसे महान नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे महान नेता आपके बीच में, आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए आप उनको वोट दीजिए और इनको जिताइए ताकि हमारे यहाँ अब, और नेताजी अब इसके बाद जनसंपर्क के लिए जाएंगे। चलिए नमस्कार जी, नेताजी आए हैं तो क्या करें भैया, नहीं करना कुछ नहीं है, अब खड़े हुए हैं तो हमसे पूछ के खड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं दादा, इस बार इनको जिताना है, पिछली बार भी तो नहीं को जिताया था भैया, इस बार भी जिताना है। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब ये कि इस बार फिर वोट देना। अरे यार भैया, पानी की समस्या हल नहीं हुई यार तुम्हारी। देखो दादा, पिछली बार इनने बोला था कि पानी आएगा, हाओ देखो इनने नल लगवा दिया ना, हाओ इस बार जिताओ नल में पानी भी आ जाएगा। अरे यार एकदम संजय कटौती हो जाती, लाइट गोल हो जाती, निकलो लोग लपाड़ा मार देते, पूछो कौन मार रहा है तो बोलते हैं कि भूत मार रहा है। कुछ टाइम तो सेट करा दो लाइट कटौती का दादा है। अब ऐसे गड्ढा कीचड़ हो गो पूरो कॉलोनी में कि सब लड़का बच्चा एक से बिल्कुल दिखते हैं कीचड़ में, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। अब कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दो, अब बच्चा ही नहीं पहचान पा, जब पूरे मोहल्ला के बच्चों के मुंह धो जब अपनों बच्चा पहचान पा। अब आज बच्चों को धोखा हो रहा हो, कल को आदमियों को धोखा होने लगे तो लफड़ी कर।
1: आगे बढ़े महिला आई, क्यों जय हैं क्या नेताजी?
0: हाँ हाँ जय हैं जय हैं।
1: राम राम नेताजी।
0: राम राम, कहिए क्या बात है?
1: एक समस्या थी हमारे यहाँ।
0: बताइए बताइए क्या समस्या?
1: समस्या ये थी कि हमारी लैट्रिन 3 दिन से साफ नहीं।
0: तो नेताजी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
1: करना कुछ नहीं, आपको मोह भर चलाना है।
0: आप लोग हंस देते हो, नेताओं से बुराई हम लोगों की हो जाती है।
2: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

हंसना मना है। इस धारावाहिक का नौवां भाग अभी आपने संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। भारतीय रेल ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। और केंद्र सरकार ने उच्च अल्कोहल मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

जीवन में सफलता का रहस्य सही समय पर सही निर्णय लेना है। चाणक्य के इसी सुविचार के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ राधिका वाजपेयी। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। साथियों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो सबसे पहले मन में क्या आता है? उसकी अच्छी शिक्षा, उसका उज्जवल भविष्य और समय आने पर उसकी जरूरतों को पूरा करने की चिंता। और इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। साथियों, ये योजना खास तौर पर बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर ये खाता खोल सकता है। साथियों, उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमों के अनुसार छूट भी दी जाती है, जैसे जुड़वा बेटियों के जन्म पर। दोस्तों, इस खाते में हर वर्ष न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सरकार समय समय पर इस योजना की ब्याज दर तय करती है, जो सामान्य बचत योजनाओं की तुलना में अक्सर अधिक आकर्षक होती है। साथ ही उस योजना की एक और विशेष बात ये है कि इसमें जमा राशि, मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता पर प्राप्त राशि, तीनों पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लाभ उपलब्ध हो सकता है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए कुछ राशि निकाली जा सकती है। वहीं 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व हो जाता है और पूरी राशि बेटी को मिल जाती है। दोस्तों, ये योजना सिर्फ बचत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक संदेश भी देती है कि बेटियां परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आज हम छोटी छोटी बचत की आदत अपनाते हैं तो आने वाले वर्षों में यही बचत हमारी बेटियों के सपनों को नई उड़ान दे सकती है। साथियों, याद रखिए, बेटियों पर किया गया हर निवेश केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निवेश होता है। और सुकन्या समृद्धि योजना इसी सोच को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। तो साथियों, ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना पर। साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं खामोशी फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

साथियों, खामोशी फिल्म के इस गीत को आवाज दी थी कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। गीत था मजरू सुल्तानपुरी का, जिसे संगीत से सवारा था जतिन ललित ने। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर कोई इमारत लगभग 2000 साल से भी अधिक समय से खड़ी हो, जिसने साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा हो, लाखों लोगों की तालियां सुनी हो और आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हो, तो क्या वो सिर्फ एक इमारत होगी? बिल्कुल नहीं, वो इतिहास की जीवंत गवाही होगी। आज हम बात कर रहे हैं कोलोसियम की। कोलोसियम इटली की राजधानी रोम में स्थित एक विशाल प्राचीन एम्पीथिएटर है। इसका निर्माण पहली शताब्दी रोमन सम्राट वेस्पासियन ने शुरू करवाया था और उनके पुत्र टाइटस ने लगभग 80 ईस्वी में इसे पूरा कराया। उस समय ये केवल एक भवन नहीं था, बल्कि रोमन साम्राज्य की शक्ति, कला और इंजीनियर का अद्भुत उदाहरण माना जाता था। साथियों, कहा जाता है कि इसमें लगभग 50,000 से 65,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी, जो उस समय की वास्तुकला की एक बड़ी उपलब्धि थी। साथियों, कोलोसियम में ग्लेडिएटरों के युद्ध, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक आयोजन होते थे। आज जब हम इन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी समझते हैं कि समय के साथ समाज के विचार और मानव मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है। वहीं सदियों के दौरान भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से कोलोसियम को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसका अधिकांश भाग आज भी सुरक्षित है। इसकी भव्यता आज भी लोगों को प्राचीन रोमन सभ्यता की याद दिलाती है। साथियों, आज कोलोसियम केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। कोलोसियम पर्यटक, शोध और सांस्कृतिक अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल हमें केवल अतीत की घटनाएं नहीं बताते, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी संस्कृति, कला और विरासत से होती है। जब हम इन धरोहरों का सम्मान करते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखते हैं। इतिहास केवल किताबों के पन्नों में नहीं मिलता, वो ऐसी धरोहरों की दीवारों में भी सांस लेता है। इसीलिए जहाँ भी जाएं, अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करें, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को सहेजता है, वही भविष्य को और अधिक सशक्त बनाता है। साथियों, ये तो थी चर्चा इतिहास

0: ऐतिहासिक स्थल कोलोसियम के बारे में। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वार्ता वन्य जीव संरक्षण का महत्व। वार्ताकार हैं अर्पित रावत।
1: इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा जीवित ग्रह है जहाँ पर जीव जगत का अस्तित्व है। जीवन के पंच महाभूत विश्व ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ है। आकाशगंगा में इतना अनोखा ग्रह ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ग्रह की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वह जीव जो स्वच्छंद रूप से एक विशिष्ट एवं निश्चित प्रगतिवास में जानवर के रूप में वन में निवास करते हैं, उन्हें हम वन प्राणी की संज्ञा देते हैं। वह वन प्राणी दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। इसी प्रकार मनुष्य के भोजन की प्रवृत्ति की दो प्रकार होते हैं, सामिष और निरामिष। श्रोताओं, आदि मानव बलकल वसन धारण करता था और मांसाहारी था। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था वह पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अग्नि के आविष्कार के बाद वह मांस और अन्य प्रकार के भोजन को पकाकर खाने लगा। उस युग में सघन और जरूरत से ज्यादा वन थे, इसीलिए उस युग में आखेट पर प्रतिबंध नहीं था। युगांतर में राजा महाराजा भी निश्चित वन क्षेत्र में संयुक्त अनुशासित शिकार किया करते थे। यह आदि मानव से आज तक का आधुनिक आदमी भी मानता है और जानता है कि वन्य प्राणी हमारे सच्चे साथी हैं, क्योंकि वन जीवों से ही वनों की शोभा में वृद्धि होती है। वन्य जीवन का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अस्तित्व पर निर्भर है। इनसे प्रकृति शोभायमान होती है और इनके संरक्षण से ही वन एवं प्रकृति को अक्षुण रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, वन्य जीव हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं। इनकी रक्षा से जीवन की रक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। संसार में सूक्ष्म से विशालकाय प्राणी पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से किसी भी प्रजाति के लुप्तप्राय, संकटग्रस्त या समाप्त होने से यह नाजुक पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा। वन्य प्राणी प्रकृति को संतुलित रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। वे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। प्राणियों तथा पौधों के पोषण संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चीतल प्रजातियों घास खाती हैं और इन प्रजातियों को मांसाहारी पशु जैसे बाघ, तेंदुआ आदि खाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला के संतुलन से ही पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का अस्तित्व कायम रह सकता है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय देवी देवताओं के वाहन वन प्राणी ही थे। जैसे दुर्गा का वाहन सिंह, विष्णु का वाहन गरुण, गणेश का मूषक, कार्तिकेय का मोर, गंगा का मगर, सरस्वती का बतख आदि। कछुआ, मत्स्य और वारा आदि विष्णु के अवतारों में से एक थे। हाथी को गणेश के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा पत्रों को प्रेषित किया जाता था। तोता पालने का चलन तो घर घर में था। बहुत से वन प्राणी हमारे पालतू बनकर हमारे सामाजिक साथी कहलाते हैं। जैसे गिद्ध हमारे समाज का सफाई कर्मी कहलाता है। दुर्भाग्य से इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पेंगुइन, भालू आदि चींटियों को खाना पसंद करते हैं, मगर पानी के किनारे या भीतर वन प्राणियों के सड़े गले अवशेष खाकर पानी की शुद्धता और गुणवत्ता को बरकरार रखता है। भारत में वन प्राणियों का शिकार 1972 से प्रतिबंधित है। जब वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 पूरे देश में लागू हुआ, वन की रक्षा से ही वन प्राणियों की सुरक्षा होती है। वन, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास के मैदान, भांति भांति के जंगली जानवर और पक्षियों के निवास स्थल हैं। इसलिए वन प्राणी के लिए वनों की रक्षा और संरक्षण आवश्यक है। आज मनुष्य यह भूल बैठा है, पृथ्वी में अन्य जीव जंतुओं को रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को। वस्तुतः मनुष्य जीव जगत तथा वनस्पति एक दूसरे के अस्तित्व के लिए न केवल आवश्यक हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। इनके हित में कोई टकराव नहीं है। यदि मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से भूमि और प्रकृति के तमाम साधनों का उपयोग करें, तो प्रकृति भी सभी अंग जिनमें वन प्राणी भी सम्मिलित हैं पृथ्वी का एक साथ विद्यमान रह सकते हैं। अतः हम विवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति के संसाधनों का दोहन करें। आधुनिकता और औद्योगिकरण के इस युग में यदि अपनी खुशहाली बनाए रखना है तो इस दुष्कर दायित्व का वहन करना ही होगा, क्योंकि वन पशुओं के विनाश का अर्थ है प्रकृति का असंतुलन। ईशावत्स्याम इदम सर्व यति किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजिता मा ग्रद कश्चित धनम। ईशोपदेश के इस श्लोक के अनुसार यह विश्व परम शक्तिमान ईश्वर के द्वारा निर्मित जीवों के प्रयोग एवं लाभ के निर्मित किया जाता है। अतः जीव प्रजातियों को परमेश्वर द्वारा निर्मित इस विश्व के लाभों का उपयोग एक तंत्र की इकाई के रूप में बने रहकर करना सीखना चाहिए। किसी जीव प्रजाति को अन्य प्रजातियों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि वन प्राणी संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना

0: बहुत आगे है। हालांकि सोन चिरैया अभयारण्य समाप्त किया जा रहा है, पर्यावरणविदों की विशेष रुचि और जन आंदोलन तथा मीडिया के कारण इंदौर का राला मंडल अभयारण्य समाप्त होते होते बच गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभय वन में बसे गांवों के निवासियों एवं वन प्राणियों के हितों में टकराहट ना हो, इसलिए इन गांवों के विस्थापन की व्यवस्था का प्रबंधन भी किया गया है ताकि जनता को कोई कठिनाई ना हो। वन्य प्राणी अभय स्थल जैसे अभय वन, राष्ट्रीय उद्यान तथा बायोस्फीयर रिजर्व वन प्राणियों के लिए विशेष रूप से घोषित किए जाते हैं तथा वहां विशेष रूप से वन प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन का प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के बलबूते पर ही अनेक संकटग्रस्त लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियां जैसे बारहसिंघा, चीतल, जंगली भैंसा, सोन चिरैया, खरमौर, कृष्णमग, चौसिंघा और बर्फीला चीता और घड़ियाल जैसी प्रजातियों को बचाया जा रहा है। सोन चिरैया, खरमौर, घड़ियाल, कृष्णमग आदि के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में पृथक से अभयारण्य बनाए गए हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेषकर रतलाम अंचल में लुप्तप्राय पक्षी खरमौर को प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली के प्रयास से संरक्षण मिला है। इसी पक्षी के संरक्षण संवर्धन के लिए सैलाना में पृथक से अभयारण्य बनाया गया है। लुप्तप्राय सरीसृप घड़ियाल के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल और चंबल राष्ट्रीय अभयारण्यों की स्थापना की गई है। कृष्णमग की रक्षा के लिए बगदरा, सीधी एवं नौदेही सागर में अभयारण्य का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में बारहसिंघा को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, जबकि आज से 40 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में बारहसिंघा की नस्ल समाप्ति पर थी। इनकी संख्या सिर्फ 60 के आसपास रह गई थी, लेकिन अब विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यह पर्याप्त संख्या में है। लुप्त होते खूबसूरत पक्षी दूरदराज का संरक्षण बेहतर तरीके से हो, इस हेतु इसे प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व 40,000 बाघों की संख्या स्वतंत्रता बाद घटकर 4,000 रहने के कारण टाइगर प्रोजेक्ट भी प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यानों में लाए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सृष्टि में वन प्राणी मनुष्य के सच्चे जीवन साथी हैं। विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां मनुष्य वन जीवों को अपना मित्र बनाकर उनके साथ सारा जीवन गुजार देते हैं। अनेक प्रकृति प्रेमी एवं वन्य विशेषज्ञ तथा वन्य प्राणी प्रेमी इन वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन एवं सेवा के लिए अपना सारा जीवन तक समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही जीव और जीने दो तथा अहिंसा परमो धर्म जैसे सिद्धांत चरितार्थ हैं। अतः वन प्राणियों के शिकार ना करके हमें उन्हें कैमरे में कैद करें तथा उनके सच्चे साथी बने, ताकि यह बेजुबान वन प्राणी केवल किताबों की वस्तु बनकर ना रह जाएं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता वन्य जीव संरक्षण का महत्व। वार्ताकार थे अर्पित रावत। साथियों, कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में ही अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को हमेशा यही शिकायत रहती है कि समय ही नहीं मिलता। दिलचस्प बात यह है कि समय सबको बराबर मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और कोई उसे बिना सोचे समझे गवा देता है। यही हमें समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का महत्व समझाता है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने समय की सही योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और प्रत्येक कार्य को उचित समय पर पूरा करना। इसका उद्देश्य केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि सही काम सही समय पर और सही तरीके से करना है। साथियों, आज के समय में विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा लोग हों या व्यवसायी हों, हर किसी के लिए समय प्रबंधन एक आवश्यक कौशल बन चुका है। साथियों, यदि हम अपने दिन की योजना पहले से बना लें, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और अनावश्यक कार्यों में समय न गवाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य समय पर प्राप्त कर सकेंगे बल्कि मानसिक तनाव भी कम कर सकेंगे। दोस्तों, समय प्रबंधन का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे अनुशासन की आदत विकसित होती है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरे के समय का भी सम्मान करता है। यही आदत उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। साथियों, महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि समय का सही प्रबंधन भी आवश्यक है। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अनेक साधनों के बीच समय का सही उपयोग करना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसे अपने समय पर हावी

बिना होने दें। साथियों, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए समय को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी को सफलता और सम्मान दिलाता है। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनवाते हैं टू स्टेट फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

ब्लू स्टेट। अभी आपने सुना इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज दी थी अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा ने। अमिताभ भट्टाचार्य की रचना को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। साथियों, अब आपको बता देते हैं रोजगार सूचना। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं।

पद का नाम सेक्शन कंट्रोलर, पद की संख्या 119। साथियों, शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 33 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। साथियों, आवेदन की प्रारंभिक तिथि 15 जुलाई 2026 है, वहीं अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, जानकारी और विचारों की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए अपनी दोस्त राधिका वाजपेयी को। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए

आज़ाद। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अमित त्रिवेदी और मीनल जैन की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

और आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में देव कोहली का लिखा और राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है मैंने प्यार किया।

अगला गीत छावा फिल्म से है, हिरल विरदिया और एआर रहमान की आवाज़ें, इरशाद कामिल के बोल, संगीतकार एआर रहमान।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए। दुल्हन वही जो पियामन भाई फिल्म का गीत, इसे गाया है यशुदास, हेमलता और बांसुरी सेन गुप्ता ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अभी आपने ये गीत सुना, यशुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता ने इस गीत को गाया था। दुल्हन वही जो पियामन भाई फिल्म के लिए इस गीत को लिखा और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। और इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम दान,

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया, जिसमें भारतीय और न्यूजीलैंड सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन चावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रूपये की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। और भारतीय रेल ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोता, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कर

0: कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्य राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: बदला। मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश किया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर
4: बढ़े चलो, बढ़े चलो
3: सिकंदर,
4: बढ़े चलो।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
3: वापस चलो,
0: चलो सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों,
3: सुनो मेरे वीरों, सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दुष्टों को, भाग मेरे पास, पकड़ो इन्हें।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को

0: असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
2: धन्य हो आचार्य,
3: धन्य हो,
2: धन्य हो,
3: धन्य हो।
4: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा,

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए।

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग अभी आपने एनसीईआरटी का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर्स 2660902 या 2660903 पर फोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। 12 जुलाई 2026, समय 7:30 से 8 बजे के बीच, फोन नंबर्स हैं 2660902 या 2660903।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल कंजम्पशन, अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
7: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
6: जी।
7: जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
6: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
7: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
6: जी,
7: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी

चीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो, और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं, तो उस चीज को

0: समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीट का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या एक्स वाई जेड इन माय फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास फ्रस्ट्रेशन वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
0: जी।
1: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से
0: जी। तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है ना, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
0: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
1: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस रियूज रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट

0: में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा, लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो एलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 330।

0: 33 जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं,
0: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल जो भी। तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहाँ जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, तो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने के। की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ

0: सही के लिए बोला जाएगा,
1: जी
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना, साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफ स्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस,
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की, उसका बहुत बड़ा एमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आप आपको प्रमुख लगते हैं जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं?
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन रिस्पॉन्स।

0: रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल, एंड जी इज गवर्नेंस। तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक

0: नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्य

न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसदीय मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

0: गया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में, 9:30 पर खेल जगत में हम सुनवाएंगे अमर भटकर से की गई भेंट वार्ता, मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं, भेंट करता है मनीष गजबिये। आपकी फरमाइश का समय रहेगा रात 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आनंद लीजिए अम्बरीश कालेले के गिटार वादन का, राग होगा गावती। आज शाम 7:21 पर भोपाल केंद्र से प्रसारित ग्राम सभा में सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनते हैं सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, सुरमई सवेरा। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। 9:30 पर सुनिए चंद्रकला साहू के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत लोक संगीत कार्यक्रम में। इनसे मिलिए कार्यक्रम में 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे देश के प्रख्यात और बहुचर्चित कवि और गीतकार आलोक श्रीवास्तव से शोभम तिवारी की बातचीत। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10 बजे। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में क्षमा कीजिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मालविका कानन के ख्याल गायन, राग है देसी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे हम सुनवाएंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12 बजे और दोपहर 2:30। 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय क्रम के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1 बजे महक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर योगवाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां रीवा केंद्र की होंगी। कल शाम 7:45 पर सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृत भारती और 10 बजे

संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनवाएंगे डॉक्टर आर माधवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कल शाम 7:21 पर भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ऐतिहासिक, 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑकलैंड दौरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में किया 5,017 करोड़ रुपए की उज्जैन जावरा 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन। वहीं मुख्यमंत्री कल इंदौर में करेंगे मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव का शुभारंभ। और उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी कवच प्रणाली के लिए मंजूर हुए 206 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचे हैं। करीब 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। लोगों ने तिरंगा लहराते हुए किया ओरा मोदी के नारे लगाए। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित हुआ। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय नागदा और जन सेवा पहली नेटवर्क का भी शुभारंभ किया।
1: एक साथ 2 बड़ी-बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा।
0: ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके हित में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाएं मिलते ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25% आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री

0: डॉक्टर यादव ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर में मध्यप्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से मध्यप्रदेश युवा संकल्प 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रेल ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर कवच प्रणाली लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली घनी आबादी वाले मार्गों पर लागू होगी। कवच प्रणाली सिग्नल उल्लंघन और ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। ये प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक भी लगाती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड की अटेर चंबल पुल परियोजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में पुल के शेष कार्य के लिए लंबित वन विभाग NOC जल्द जारी करने का आग्रह किया है। श्री सिंधिया ने कहा है कि पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल की है। अब कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 8 जुलाई को पहली बार एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को ये राशि दी गई। अपर मिशन संचालक दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि ये व्यवस्था 26 अगस्त 2025 से लागू है। 1 सितंबर 2025 के बाद सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मिशन कर्मचारियों को अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभ भी दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इसी महीने की 1 तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मेटा को इस फीचर पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश था कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर को लागू ना किया जाए। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। यह शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12% से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री पर नई शर्त लगाई है। अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। ये दवाएं ओवर द काउंटर श्रेणी से बाहर कर दी गई हैं। फार्मासिस्टों को अब केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही इन्हें उपलब्ध कराना होगा। आज विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेत्रदान में मृत्यु के बाद कार्निया जरूरतमंद मरीजों के लिए दान किया जाता है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगों को दृष्टि मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रक्रिया चेहरे की बनावट को प्रभावित नहीं करती। भारत में मांग के मुकाबले दान किए गए कार्निया की संख्या अब भी काफी कम है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज 8,796 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अब तक 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे की रतलाम मंडल ने एक अभिनव पहल करते हुए रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में स्थापित 30 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का पुनर्स्थापन कर उसे सोलर कॉर्पोरेट के रूप में विकसित किया है। कटनी में वर्षा ऋतु के दौरान जल जमाव से राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। धार जिले में सड़क दुर्घटनाओं

को रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश जारी किया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल ना दें। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने जिला कंट्रोल रूम में न्यायालयों में पदस्थ कोर्ट मुहररों की मासिक बैठक ली। नर्मदापुरम जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों अपन देख ही रहे कि बारिश को मौसम शुरू हो चुका है और बारिश शुरू होते ही अपने जो किसान भैया हैं वे अपनी फसल की बुवाई कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार करते हैं। अगर बहुत जल्दी या बहुत देर से बुवाई करेंगे तो अंकुरण और उत्पादन दोनों ही प्रभावित हो सकता है। और बुवाई के लाने अपन लोग क्या करें कि प्रमाणित बीजों को ही उपयोग करें। बुवाई से पहले बीजों को उपचार करें, जैसे कहा है कि बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण भी अच्छा होता है। और जब अंकुरण अच्छा होगा तो अपने जो फसल है बाको उत्पादन भी अच्छे होगा और अपने जो पौधा हैं वे भी मजबूत होंगे। तो अपन ये जरूर ध्यान रखें कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो जैसे कहा है कि खेतन में पानी भर सकता है, तो जिससे कि अपने जो पेड़ पौधे हैं बिनकी जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो जाके लाने अपन का करें, जल निकासी की व्यवस्था अपने खेतों में करके रखें। जाके जैसे कहा है कि अतिरिक्त तो जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। और जा समय उर्वरकों को अपन जो उपयोग करते हैं वे संतुलित मात्रा में ही करें। मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य जो पोषक तत्व हैं बिन को उपयोग करें। बारिश के मौसम में अपन देखा था ना कि खरपतवार बहुत तेज़ से बढ़ती है, तो ये फसलों के जो पोषक तत्व हैं बिन को उपयोग करते हैं, जैसे कहा है कि अपना जो उत्पादन है वहाँ पे असर पड़ता है। तो अपन समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर खरपतवार नाशी को अपन उपयोग करें। और जा समय अपन एक चीज़ और देखते हैं, अनेक प्रकार के रोग और कीट भी जो है बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो नियमित रूप से अपनी खेती को निरीक्षण करते रहें और साथ ही साथ अगर अपन को रोग या कीट के लक्षण दिखें तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उचित दवा को अपन छिड़काव करें। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैया अपन चर्चा कर रहे थे बारिश के मौसम में अपनी खेती किसानी की कैसे रक्षा करें, जाके अलावा अपने गांव के जो तालाब हैं, जलाशय हैं, जिनकी अपन समय समय पर साफ सफाई करके बारिश को जो पानी है वो एकत्र कर लें, जो बाद में कहा है कि अपने खेतों की सिंचाई के लाने उपयोगी होगा, और अगर जल संकट पड़त है तब अपनो साथ देखो, और एक ही फसल पर निर्भर न रहकर बाकी जगह अपन दलहन तिलहन सब्जियों और अन्य फसलों को भी करें, जैसे कहा कि जोखिम कम हो और अपनी जो आय है वहाँ में भी वृद्धि होगी, और बारिश के मौसम में अपने जो पशु हैं बिने अपन साफ सूखे स्थान पर रखें, उनको रहने को जो स्थान हो वो गीला न रहे, उन्हें साफ स्वच्छ पानी दें, संतुलित चारा दें, तो बारिश के और जाके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बारिश के समय खेतों में काम करते समय अगर बिजली गिर जाए तो बाद समय अपन खुले में ना रहें, पेड़ों के ऊपर न चढ़ें और बिजली के खंभों के नीचे खड़े ना हों, तो अपन ये जरूर ध्यान रखें कि अगर मौसम खराब हुए तो अपन सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और जब मौसम सामान्य हो जाए तब ही अपने कृषि कार्य करें। अपने जो ट्रैक्टर हैं, पंप सेट हैं और अन्य जो कृषि उपकरण हैं उनको बारिश से बचाकर सूखे स्थान पर रखें, ताकि क्या है कि बिन में जंग न लगे, और मौसम की जानकारी समय समय पर लेते रहें, वर्षा तेज हवा की संभावना होने पर उसी के अनुसार बुवाई उर्वरक और दवा को अपन छिड़काव करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने गांव में पानी का जमाव ना होने दें, जल निकासी कचड़े का उचित निपटान करें, और अगर जल भराव होगा तो बात से कहा है कि मक्खी मच्छर फैलेंगे, तो जैसे कहा है कि बीमारियां होंगी, तो अगर अपन सभी मिलके इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बारिश के मौसम को अपन आनंद ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी फसलों से भी अपन अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते हैं जी संदेश।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया अपन अपनी खेती किसानी में उर्वरकों को उपयोग तो करते हैं और साथ ही साथ यूरिया को भी अपन सभी उपयोग कराते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं और अपन लोग जो सामान्य यूरिया उपयोग करते हैं बाका का है कि एक बड़ा हिस्सा पौधों द्वारा उपयोग नहीं पाता, वर्षा सिंचाई और बाष्पीकरण के कारण नष्ट हो जाता है। तो जैसे कहा कि अपन को नुकसान होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, तो जा समस्या के समाधान के लाने नीम कोटेड यूरिया का विकास किया गया। ये जो सामान्य यूरिया होता है बापे कहा है कि नीम का तेल या नीम आधारित पदार्थ की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है। जैसे कहा है नाइट्रोजन पौधों को धीरे धीरे मिलते हैं और जैसे फसल में वृद्धि होती है और उत्पादन भी बढ़कर मिलते हैं। और नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से अपन जो सामान्य यूरिया उपयोग करते हैं बाकी मात्रा भी कम लगाते हैं और जैसे अपनी लागत भी कम हो जाते हैं। तो सामान्य यूरिया से मिट्टी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, जबकि नीम कोटेड यूरिया पोषक तत्वों को संतुलित उपयोग कराते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं। और सामान्य यूरिया का एक बड़ा हिस्सा गैस के रूप में वातावरण में मिल जाता है या पानी के साथ बह जाते हैं, जबकि नीम कोटेड यूरिया इसको कम कराते हैं। और नीम कोटेड यूरिया से अपना जो भूजल है वह भी सुरक्षित और प्रदूषित होने से बचाता है। और नीम कोटेड यूरिया से फसलों को संतुलित

मुझे पोषण मिलता है। जहाँ से कहा है कि अपने पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, और जब पौधों की बढ़वार अच्छी होगी तो बाकी जो दाने होते हैं पौधों में, तो वे दानों को आकार और गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और जब अपनी गुणवत्ता और दाने का आकार अच्छा होगा तो बाद से अपन को बाजार में बाकी अच्छी कीमत भी मिलेगी। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: भैया रो, अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा गीत और अपन चर्चा कर रहे थे नीम कोटेड यूरिया के बारे में। तो भैया रो, नीम कोटेड जो यूरिया है जाको अपन उपयोग धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, गन्ना जो होते हैं कपास, दालें, तिलहन, सब्जियां, फल और बागवानी फसलों में कर सकते हैं। और नीम कोटेड यूरिया आधुनिक कृषि के लाने बहुत ही उपयोगी है और जिस सामान्य यूरिया की अपेक्षा अच्छो कार्य करते हैं तथा तो नाइट्रोजन की जो बर्बादी है बाय वो करते हैं। तो जाके उपयोग से अपनों कहा कि उत्पादन बढ़ाते हैं, लागत कम लगाते हैं और आय भी बढ़ाते हैं। और अगर अपने किसान भैया वैज्ञानिक सलाह के अनुसार जाको संतुलित उपयोग करेंगे तो बेहतर उत्पादन के साथ साथ अपन टिकाऊ खेती भी कर सकते हैं। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भैयाओं को यही कहेंगे कि नीम कोटेड यूरिया का उपयोग करके अपनी खेती किसानी से अधिक लाभ कमाएं। भैयाओं, अपन देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है और गर्मियों में अपन देखते हैं कि पानी को संकट हो जाता है, तो अपन को जल संरक्षण के कई उपाय करने चाहिए। अब जल संरक्षण के जो उपाय हैं बिनके बारे में अगर आज आपको एक भेंट वार्ता सुनवाते हैं जाको विषय है जल संरक्षण की आधुनिक विधियाँ, और जाके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर YM कूल और भेंट करता है SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, अनाज की आपूर्ति लगातार बनाए रखने के लिए हमें सघन कृषि कार्यक्रम भी चलाना पड़ता है। इसी तरह से हमें अपने घर गृहस्थी के लिए भी पानी की पहले की तुलना में काफी आवश्यकता पड़ रही है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जो भी उपलब्ध जल है उसका हमको अपव्यय रोकना है और जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए हम इस कमी की पूर्ति कर सकते हैं। तो जल संरक्षण के आज कौन-कौन से आधुनिक तरीके हैं, इसी संबंध में जानकारी के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर YM कूल। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो जल संरक्षण के परंपरागत तरीके हैं उनको अपनाया जाए या आधुनिक तरीके हैं, क्या कुछ सलाह है आपकी?
2: देखिए किसान भाइयों, हमें आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे कम व्यय में अधिक से अधिक पानी, जैसे आप जानते ही हैं पानी का संरक्षण हमारे यहाँ बहुत कम है, तो इसमें चार तरीके मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा।
1: जी,
2: रिचार्ज जोन। रिचार्ज जोन एक ऐसी भूमियाँ हैं जो 8% से अधिक ढलान वाली भूमियाँ हैं, जो करीब हमारे क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके वाली भूमियाँ हैं, वहाँ पर हम पौधे लगा के, बड़े पौधे लगा के, जिसमें से आधुनिक में रूप से मैं कहूँगा वहाँ पर आप ऐसी पौधों का रोपण करें जिनकी जड़ें गहरी हों
1: जी।
2: और जो पानी को बह के ना जाने दें। तो इसमें एक सालवुड एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जो करीब 100 फीट ऊपर है और उसकी जड़ें करीब 250 फीट नीचे जाती हैं।
1: जी जी
2: ऐसे हमारे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो रिचार्ज को बढ़ाने वाले हैं। इनको हम रिचार्ज जोन में, ऐसी मिट्टियाँ, ऐसी भूमि, ऐसे सतह जो 8% से अधिक ढलान वाली हों, वहाँ पर बड़े पौधे लगाकर हमें पानी को रोकना चाहिए। उसमें क्या होगा, जब कभी भी वर्षा होगी तो इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जड़ें मिट्टियों में छेद करके अंदर तक पहुँचती हैं, और जब आप ये सोचें 200 फीट तक जिसकी जड़ें नीचे पहुँचें तो सबसे पहले पानी इन जड़ों से होता हुआ उसको सेटिस्फाई करता है।
1: जी
2: भूजल तक हमें, जो आपको आज की तारीख में कुएं के रूप में पानी उपलब्ध होता है, वो उसके रिचार्ज करने वाली

0: यही पौधे हैं, यही हमारे नदी नालियां हैं, जिसके माध्यम से ऊपरी क्षेत्रों से बहता हुआ पानी आके हम जब रिचार्ज जोन में उसे संरक्षण करते हैं तो हमारे क्षेत्र में वो संरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से जो 8% से कम ढलान वाली क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्य रूप से हम कृषि करते हैं, लेकिन वहाँ भी हम देखें कि पौधारोपण जरूर करें। जैसे आपके फलदार वृक्ष हैं, हमारे क्षेत्र में शरीफा है, आम है, अमरूद हैं, बेर हैं, ऐसे बहुत सारे
1: आंवला वगैरह हैं,
0: आंवला हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं। और आप ये सोचें फल का फल मिले, और इससे ज्यादा आधुनिक आप क्या सोच सकते हैं
1: जी, इनकी जड़ के भी
0: जल संरक्षण भी साथ साथ आप कर रहे हैं, पौधे आपको फल भी दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूसरे सबसे अच्छे तरीके हैं वो है तालाब बना के, किसी भी तरह से तालाब बनाइए। आपने देखा होगा कंक्रीट डैम है, अर्दन डैम है, जो मिट्टी से बने हुए डैम है, आपने हमारे क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे डैम बने हुए हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे ग्वालियर और चंबल संभाग की यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु और यहाँ की परिस्थितियों में हमें किस तरह के तालाब जल संरक्षण के लिए बनाना चाहिए?
0: देखिए, मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर पत्थर काफी उपलब्ध है और पानी ऊपर भी मिल जाता है तो गैबियन टाइप के बना के आप उसको पानी को रोकें और पत्थरों से अगर उसको जहाँ पानी की रोक लगाएं और तालाब बनाएं तो हल्का हल्का सा आप देखेंगे कुछ एक दो सीजन बाद वो पानी भर जाता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती, टूटने का बिल्कुल डर नहीं रहता। तो बोल्डर टाइप के आप छोटे छोटे बंधान बना के भी इस तरह से पानी को रोक सकते हैं। तो ये तो पानी की आवश्यकता, वहाँ की भूमि, हम एक इन जनरल पूरे इसके लिए क्षेत्र के लिए नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट टाइप ऑफ डैम या बोल्डर टाइप या गैबियन टाइप ऑफ जो हम बंधान बना के पानी को रोकते हैं वो अच्छे तरीके काफी कारगर हैं। और हमारे क्षेत्रों में आप ये देखें, हमारा जो यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में जो डैम बने हुए हैं जहाँ से पानी आता है, तो ज्यादातर कंक्रीट के डैम बने हुए हैं, पक्के डैम बने हुए हैं, और उससे और बहुत छोटे से डैम, देखिए ये बहुत बड़े नहीं होते। आप हम जहाँ कहीं कहीं पानी का बहुत ज्यादा हमें संरक्षण मिल जाए तो वहाँ पर हल्का सा नाले को या नदी को पानी को थोड़ा सा रोका और वहाँ पर हमें पानी का संरक्षण काफी मिल जाता है, जिसको हम फिर ग्रेविटी से उसको नहर बना के पानी का सिंचाई अपनी फसलों में कर सकते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर हम किसान के खेतों में आए तो हम ये पाते हैं कि हमारे किसान छोटे छोटे बंड भी नहीं बनाते, बहुत चार चार पाँच पाँच किलोमीटर चले जाओ तो एकदम फ्लैट लैंड पड़ी रहती है
1: जी जी।
0: तो पानी बहा के
1: तो पानी को हम रोक भी नहीं पाते।
0: हाँ, रोक भी नहीं पाते। तो हल्का हल्का से एक दो हेक्टेयर में हल्का सा अपने ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ा के या फिर लूज बोल्डर बना के या जो मछली के जो जाली आती है वो लूज बोल्डर उसमें या जो लोहे की या स्टील की जाली है, जंग वंग ना लगे, कोई अच्छी प्रकार की जाली हो उसमें आप बोल्डर को रख के पानी के रास्ते में रखें तो छोटे छोटे पानी वो पानी को रोकती है अपनी आवश्यकता अनुसार। ज्यादा रोकने की जरूरत भी नहीं, आप उतना ही पानी का संरक्षण करें जितनी आपकी भूमि में सामर्थ्य हो, इसको संरक्षण कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पानी रोक लोगे आपकी खुद की जमीन खराब हो जाएगी, उसमें दलदल हो जाएगी,
1: इससे जो है भूमिगत जल स्तर तो बढ़ेगा ही,
0: भूमिगत जल
1: साथ में जो हमारी जमीन है जिसके महत्वपूर्ण जो तत्व हैं
0: वो भी बच के
1: रहेंगे, जो इधर से चले जाते वो भी नहीं जाने पाएंगे, तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।
0: और वैसे इसके बाद आपने देखा सबसे अच्छे तरीके हैं पौधे लगा के, बड़े पौधे लगा के, फिर मध्यम पौधे लगा के, फिर तालाब बना के, उसके बाद बंड बना के या बंधान, छोटे छोटे बंधान बनाए, और फिर इंजेक्शन मेथड। इंजेक्शन मेथड किसी भी प्रकार से आप पानी को इंजेक्ट करने का या भूमि के अंदर डालने का प्रयास करें। हल्का सा हमारे यहाँ ट्रेंचेस हम बना देते हैं, 1 फीट भी आपने ट्रेंच काटी तो मिट्टी को आप पानी को इंजेक्ट करने का आपका प्रयास है
1: जी।
0: तो ऐसे तरीकों में बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पानी की बहुत गंभीर समस्या हो वहाँ बूंद बूंद पानी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको भी हमें संरक्षण करने की आवश्यकता हो जाती है। तो उनको इन तरीकों को जब हम अपनाएं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि एक्सपर्ट की एडवाइस में और एक्सपर्ट के संरक्षण में, उसकी देख रेख में ये कार्य फार्म को करें, दूषित पानी कभी ना डालें, ट्रीटमेंट करके हम पानी को दें। ये तो हमने आपको संरक्षण के तरीके बताए
1: जी।
0: अब उससे भी ये पानी का उपयोग भी संरक्षण है। जो आपका पानी है उसको अव्यय न करें, इसका मतलब आपने संरक्षण कर लिया उस पानी का। अब कई बार हमारे किसान भाई जो कुएं का पानी है, कुएं के पानी को सिंचाई के रूप में उपयोग करने लगते। सिंचाई का पानी तो पौंड का पानी है, तालाब का पानी है। हम जब कभी फसलों में

0: गोबर की खाद डालते हैं, तो जो भी पानी हम दें, चाहे बहुत कुएं का पानी दें चाहे तालाब का पानी दें, वो तो गोबर की खाद में मिक्स होके न्यूट्रेंट के रूप में जाता है, न्यूट्रेंट के रूप में ही पानी को मिलेगा। इतना पर आपने एनर्जी भी खर्च करी, साफ पानी, पीने योग्य पानी भी। तो जब कभी कुएं का पानी का तभी उपयोग करें जब जीवनदायी सिंचाई किसी प्लांट को देनी हो, तो उस समय ड्रिप से। हमारे यहाँ देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग भी कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, फुवारा विधि है, इसके माध्यम से कम पानी का उपयोग करके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो कुएं का जल है फिर इसका अव्यय बिल्कुल ना करें, और अव्यय तो हम किसी भी जल
1: कारणों से अव्यय हो जाता है।
0: ज्यादातर हमारे किसान भाई बहुत ही अत्यधिक शक्ति की मोटर लगा देते हैं। अगर हमारे कुएं में मान लीजिए 5 लीटर प्रति सेकंड की आव है, तो उसके लिए अमूमन हमारे पूरे क्षेत्र में 3 से 4 HP की मोटर पर्याप्त है। लेकिन आप देखें ज्यादातर क्षेत्र में
1: 5 या 10 हॉर्स पावर
0: की, 15 हॉर्स पावर की किसान भाई सोचता है कि पानी आ जाए, इतनी तेजी से पानी को निकाल देता है कि जो बूंद बूंद पानी बाहर निकल आता है और फिर वो पानी रिचार्ज नहीं हो पाता। ऐसे इसीलिए जो भूजल स्तर है वो नीचे चला जाता है। हमारे क्षेत्र में भी देखिए अब लगातार पानी का बहुत ज्यादा निकालने से, बहुत ज्यादा अव्यय करने से उसमें हमारे भूजल में, क्योंकि ऊपर से प्रकृति में भी थोड़ा सा पानी की जैसा आपने शुरू में कहा था कमी तो हो रही है, लेकिन पूरे वर्ष में उसका कहीं ना कहीं अभी अगर हम पूरे उसको देखें अपने पूरी कंट्री या ग्लोबल बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होती है।
1: जी, तो ये ड्रिप जी जिसको टपक सिंचाई कहते हैं, ये कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है?
0: देखिए ड्रिप सिंचाई तो किसी भी फसलों के लिए उपयोगी है, लेकिन खासतौर से आप ध्यान रखें जो अंडुलेटिंग उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां तो जहां आप सिंचाई नहर से कर नहीं सकते
1: जी,
0: तो वहां तो कुछ होना नहीं। अगर आपने ड्रिप से एक बूंद पानी भी दिया तो उससे प्रोडक्शन ही निकलना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिन किसान भाइयों ने अंडुलेटिंग भूमि जहाँ सिंचाई और किसी तरीके से नहीं दी जा सकती, वहाँ के लिए ड्रिप या स्प्रिंकलर मेथड का उपयोग किया है, कृषि बहुत लाभदायी होगी
1: जी।
0: वैसे तो आप इसका हर जगह उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन खासतौर से अंडुलेटिंग लैंड या में इसको
1: उबड़ खाबड़
0: जिसका सिंचाई का कोई तरीका ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो वहाँ ये इसका उपयोग है।
1: अच्छा, इसी तरह से स्प्रिंकलर सिंचाई ये काफी कुछ पानी बचाने में सिद्ध हुई है और पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार पानी मिल जाता है।
0: देखिए जैसे हमें बहुत ज्यादा प्यास लगे, हमें बहुत होठ वो हमारे सूखने पे आ जाए, हमारी फसल सूखने पे आ जाए, फिर उससे पानी की आवश्यकता बहुत नहीं होती कि उसका पानी रिक्वायरमेंट के बराबर उसे पानी पिलाओ। अगर हल्का सा आपने स्प्रिंकल कर दिया, अगर हल्का सा आपने बौछारी उसको दे दी, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। और इसीलिए लाइफ सेविंग इरीगेशन अपने कुओं को इस लिए सुरक्षित रखिए कि कभी मान लो अगर प्रकृति ऐसा करे
1: पानी की कमी हो
0: फिर आप इन मेथड्स का उपयोग करते हुए आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
1: तो एक तो जल संरक्षण करना है और
0: पानी का अव्यय रोकना है, पानी का उचित उपयोग करें। देखिए जो एक बूंद पानी आपके भूगर्भ में या कुएं में पहुंचा है उसको हो सकता है हजारों साल लगे हो, जो इतनी मात्रा में पानी आपके पास इकट्ठा हो गया, तो हम उस पानी का बहुत सावधानी से उपयोग करें जिससे प्रकृति हमेशा, हमारे यहाँ की प्रकृति बहुत ही अच्छी है, हमारे यहाँ की मिट्टियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि इसका इतना ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमने अभी भी हमने इस पे सावधानियाँ नहीं बरती तो इस तरह की मुश्किलें हमारे सामने आ सकती।
1: कहते हैं ना कि जल है तो कल है
0: जी, ये बात
1: अपना जीवन सुरक्षित कर सकते।
0: ये बात आपने सही कही, और हमारे जो तकनीकी सलाह है हमारे राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 25 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे आंचलिक अनुसंधान केंद्र हैं, हमारे कृषि महाविद्यालय हैं, वहाँ पर आप संपर्क करें और तकनीकी रूप से किस फसल को कितना पानी देना है, कौन सा तरीका अपनाना है, इसका वैज्ञानिक तरीका हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते भी हैं, एक दूसरे से अपना अनुभव और अपना ज्ञान एक दूसरे से बांटेंगे
1: जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर YM कुल साहब, आप हमारे चौपाल कार्यक्रम में आए और आपने किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से जल संरक्षण की आधुनिक विधियों को अपना करके हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, पानी को फसलों में ठीक प्रकार से दे सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: भैया अभी अपन ने सुनी भेंट वार्ता जाको विषय है तो जल संरक्षण की आधुनिक विधियाँ, और जा के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YM कुल।

और भेंटकर्ता थे एसएस चौधरी। तो भैया जब भेंटवार्ता के माध्यम से अपन ने समझो कि अपन को जल को किस प्रकार संरक्षण करना है, बाघ को अपन किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, तो इन सब विधियों को अगर अपन उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर अपन जल को संरक्षण कर सकते हैं। भैया अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना जो देश है वो बहुत विशाल और विकासशील देश है, और जाकि आर्थिक जो प्रगति है वो देश के प्रत्येक नागरिक पर निर्भर करता है। आज अपन देख ही रहे हैं कि विश्व स्तर पर परिस्थितियां बदल रही हैं, आर्थिक चुनौतियां आ रही हैं, तो इन सभी के बीच भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान की योजना शुरू की गई, जाका उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर बनाकर भारत को उत्पाद के क्षेत्र में और नए क्षेत्रों में विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है। भैया आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य विदेशी जो वस्तुएं आती हैं बाकी निर्भरता पर कम कर जाए और अपने देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करके युवाओं के लाने रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और किसानों की आय में वृद्धि करना है और आधुनिक जो तकनीकें आती हैं बिनको अपन उपयोग मिले और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिले। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल निर्माण दवा उद्योग ऑटोमोबाइल सौर ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दो है, जैसे कहा है कि उत्पादन और रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है। तो भैयारों आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अपने किसान भैयारों के लाने भंडारण सुविधाएं, आधुनिक कृषि उपकरणों और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान दो है और जा अभियान के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योगों को बिना अतिरिक्त गारंटी के ऋण वित्तीय सहायता नई तकनीकें अपनाने की सुविधाएं तथा सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी गई है। इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों लघु उद्योगों हस्तशिल्प आदि के माध्यम से अपनी जो गांव की महिलाएं हैं बिना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने को प्रयास कर रहे हैं। भैया अपन देखते हैं ना कि अपने गांव में हस्तकला हस्तशिल्प अपन जैसे छोटी छोटी डलियां बनाते हैं और इन सब की चीज़ों का अपन उपयोग कराते हैं, बाजार में जो अच्छे दामों पर बिकते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे कि अपनी जो महिलाएं हैं वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और जब अपन स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे, अपने संसाधनों को सही से उपयोग करेंगे, तब अपन एक सशक्त समृद्ध और विकसित भारत को सपना साकार कर सकेंगे। तो भैयारों हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपनी सभी किसान भैयारों से यही कहेंगे कि अपन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, अपने जो अपने लोकल के उत्पाद हैं स्वदेशी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दें और छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दें जिससे अपना जो देश है वो आर्थिक उन्नति कर सके और एक सशक्त भारत बनने के बाद आत्मनिर्भर भारत बने। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनत है ये प्यारा सो लोकगीत।

भैया रो, अभी अपन ने सुनो ये प्यारो सो लोकगीत, और अब हो गई ये चलबे की बेला। तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: है। लीजिए सुन कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं टीना।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीना झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री 40 वर्षों बाद न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री फर्गसन ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऑकलैंड का प्रतिष्ठित हाई टावर भी भारत न्यूजीलैंड की मित्रता के रंगों में जगमगा। वहीं भारतीय समुदाय में भी मिला है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस यात्रा का रणनीतिक महत्व क्या है, भारत की इंडो पैसिफिक नीति में न्यूजीलैंड की क्या भूमिका है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को किस नई दिशा में ले जा सकती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक, भारत के पूर्व राजदूत श्री गुरजीत सिंह जी। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद टीना।
2: अम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 40 इसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, स्काई टावर को जिस तरह से रोशन किया गया है या फिर जिस तरह से भारतीय समुदाय का उत्साह देखने को मिल रहा है, सबके अपने प्रतीकात्मक मायने हैं। लेकिन आपकी नजर में क्या यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंध में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है?
3: है कि ये एक नया दौर शुरू हो रहा है। चाहे ये भारत के प्रधानमंत्री की 40 साल के बाद एक यात्रा है, तो प्राइम मिनिस्टर लुक्सॉन के साथ भी उनकी पहली मुलाकात ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइन पे लाओस में हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के साथ अपना संबंध बनाएं, चाहे कि एक बहुत बड़ी विजिट ऐसी नहीं हो। तो उनके प्रधानमंत्री भी पिछले साल आए थे, उनके विदेश मंत्री भी आए थे और उन दोनों का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हालांकि वो दोनों एक ही सरकार हैं, उनकी पार्टियां अलग हैं और हमारे साथ जो एफटीए हो रहा है उनके ऊपर उनका नजरिया अलग है। तो हमने न्यूजीलैंड के हर कोने की जो एक सोच है उसके साथ संबंध बनाए हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी हम न्यूजीलैंड गए हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ना तो क्वाड का मेंबर है और ना ही इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव है, लेकिन अब वो भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रहा है और भारत उसका पूरे रूप से उसका जवाब दे रहा
2: है। इस बारे में क्या आउटकम रहेगा, दोनों प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे, इस पे हम थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अम्बेसडर, आज जब इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका, ऐसे में क्या भारत और न्यूजीलैंड रीजनल सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करने में मिलकर इस तरह की भूमिका निभा सकते हैं?
3: और न्यूजीलैंड ईस्ट एशिया समिट के दोनों सदस्य और दोनों ही आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं और हम दोनों फोरम में भाग लेते हैं। तो जो अब रणनीति की बात कर रही है, इन संस्थाओं में जो बातचीत होती है उसमें भारत और न्यूजीलैंड साझा प्रयास वहां पर आ चुका है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, खासकर पैसिफिक आइलैंड्स पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड अपना हाथ उठाकर कोशिश कर रहा है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जाए और वहां पर किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से नहीं फैलने दे।
2: अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। अम्बेसडर, आपने जिक्र किया कि एफटीए का जो फॉर्मल साइन

0: है वो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले। हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत न्यूजीलैंड संबंधों में व्यापार अपनी पूरी क्षमता फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। एफटीए के बाद वो कौन से क्षेत्र हैं दोनों देशों के लिए जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं निकल कर सामने आई हैं, किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है एफटीए के बाद?
1: न्यूजीलैंड अपनी ट्रेड पॉलिसी के लिए बहुत ही माहिर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है, इसलिए वो एपेक का मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, वो आरसेप जिसमें से भारत ने एग्जिट कर लिया था उसका भी मेंबर है, और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसका भी वो मेंबर है, उसका इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट वही चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो अग्रीमेंट्स हैं जिनमें भारत नहीं है उसमें सब में न्यूजीलैंड है, क्योंकि उस न्यूजीलैंड को अपने व्यापार के लिए बड़ी मार्केट्स की एक सर्च रहती है, हमेशा खोज रहती है। तो भारत के पास भी वो इसी वजह से आया कि हमें भी भारत का जो बड़ा मार्केट है उसकी खोज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब आरसीईपी की निगोसिएशन होती थी तो न्यूजीलैंड बहुत भारत को तंग करता था, क्योंकि उसकी एकमात्र रणनीति थी कि हमारे दूध और दूध के पदार्थ भारत की मार्केट में जरूर आए।
0: जी,
1: अब हमारा जो एफटीए उनके साथ हुआ है इसमें भारत ने अपनी हमारी सोच है उसकी रक्षा की है, और इसमें दूध एग्रीकल्चर ऐसी जो चीजें हैं उनको हमने नहीं आने दिया है। लेकिन क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी हाई है, न्यूजीलैंड ने एफटीए साइन किया है और भारत के 100% गुड्स को वहां आने की अनुमति दे दी है। हमने अपनी तरफ से भी काफी ढील उनको दी है और तकरीबन 90% जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत को होता था उसको फायदा होगा एफटीए से। लेकिन जो ये बड़ी चीजें होती हैं दूध मिल्क पाउडर चीज, इन चीजों को हमने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों में समझौते की तरह हम आगे बढ़े, जैसे कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम जिसमें एप्पल कीवीज और जो उनकी एक खास शहद होता हनी होती है मरुका, उसके लिए भारत में कैसे उनको उसका उत्पाद किया जाए उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि भारत की ओर से जो लोगों की मोबिलिटी है, मतलब वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं, इसको एफटीए के अंडर हमें और अनुमति मिलेगी। और फाइनली $20 बिलियन का एफडीआई निवेश न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करेगा। तो ये होता है एक कॉम्पोजिट एफटीए जिसमें निवेश भी है, व्यापार भी है, मोबिलिटी भी है और सर्विसेज भी है। और न्यूजीलैंड का जो निवेश भारत में है वो ज्यादातर आईटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ऐसी सर्विसेज में है, तो ये उनकी क्षमताएं हैं, तो ये इस तरह से उनको फायदा होगा।
0: नई संभावनाएं हालांकि तलाश रहा है न्यूजीलैंड भी, क्योंकि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी न्यूजीलैंड को नजर आ रही हैं, और जो क्लाइम डाउन एक तरह से कह सकते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी में वो भी हमने देखा है। आपने पीपल कनेक्ट की बात कही एम्बेसडर, तो उससे जुड़ता एक सवाल है कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय समुदाय से वो संवाद जरूर करें, और न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं हम कि भारतीय समुदाय लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। क्या ये समुदाय हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक नेचुरल ब्रिज या फिर एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ कल्चरल और एन इमोशनल ब्रिज, दे आर एज मच एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिज, क्या न्यूजीलैंड के केस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रह रहे हैं वो भी इस रिश्ते को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
1: क्योंकि वहां पर तकरीबन 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जिसमें से तकरीबन 70,000 भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, तो ज्यादातर लोग तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ साल पहले से एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि भारत जैसे देशों से जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिन एरियाज में उनको जरूरत थी, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, हेल्थ वर्कर हुआ, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ, ये उन्होंने इन प्रोफेशनल्स को टारगेट करके माइग्रेशन की। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स जो उधर हैं हमारे वो सब प्रोफेशनल्स हैं, तो तो ये

0: हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा पौधा और अच्छी तस्वीर बना के देता है। अब वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इंतजार कर, आज मैंने देखा था कि कई लोग भारतीय मूल के कह रहे थे हमारा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अभी आज पहुंच गए हैं। तो जो ये मीटिंग होगी उसमें हाउस फुल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं हुई है, तो ये एक नया कीर्तिमान आज देखा जाए।
1: बिल्कुल, उस तरह की एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी देखी गई है, बल्कि कल जब मेलबर्न में भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो काफी उत्साह था। अम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट रहा प्रधानमंत्री का, न्यूजीलैंड से पहले दो दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
0: नॉर्मली न्यूजीलैंड को एक ऑस्ट्रेलिया का करीबी दोस्त माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया नीति अपनाएगा न्यूजीलैंड भी वो अपनाएगा, लेकिन इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे और चीन के ऊपर न्यूजीलैंड ने अलग कदम उठाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक में एक्टिव है, न्यूजीलैंड ने उसने इतने कदम नहीं बढ़ाए, इसलिए दोनों विजिट्स को एकमात्र रूप से देखना मैं समझता हूं थोड़ी विचित्रता आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे गहरी बात दो है, एक यूरेनियम और एक क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीजें बड़ी मात्रा में है। तो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो यूरेनियम हमको मिलेगा जिससे हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चला पाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स तो वो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और पैक्स सिलिका का भाग है ऑस्ट्रेलिया। फिर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो हमारा एक संधि हुई है उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया का मैरिटाइम बॉर्डर कमांड, ये भी दोनों आपस में अब तालमेल रखेंगे। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है वो अब तेजी से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमारे एक इंटरिम अग्रीमेंट है, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम हुआ और जिसमें कई लोग मौजूद थे, और आपने देखा होगा कि एशिया में ऐसा सीईओ फोरम नहीं हुआ। तो हर देश में वही चीज नहीं होती है, डिपेंड करता है उस देश में क्या क्षमता है। और जो कल्चरल रिपैट्रिएशन है, अभी ऑस्ट्रेलिया के पास कई भारत के सांस्कृतिक चीजें हैं जो चोरी से वहां आई हुई है, तो उन्होंने कई चीजें इस बारी भारत को लौटाई और इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड के पास यूरेनियम नहीं है, क्रिटिकल मिनरल नहीं है, उनके पास शीप है, दूध है, आईटी की क्षमता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा वादा कर दें एफडीआई का, उसका पूरा करें, तो उससे तो फायदा होगा ही। दूसरा मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो आसियान और ईएएस में भी बात होती है, न्यूजीलैंड उसको भी दोहरा रहा है। ये विजिट, जैसे मैंने कहा, एक नया दौर शुरू करेगी भारत और न्यूजीलैंड में।
1: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा बिल्कुल यही स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया से की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो न्यूजीलैंड गए हैं दो दिनों के लिए। ये स्पष्ट है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अब और अधिक व्यापक हो गया है और अधिक सक्रिय है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ सहयोग को नई दिशा देने की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और साझा समृद्धि को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

सुर्खियों में। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम का गाया, दिलीप ताहिर का लिखा और राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है 100 डेज़।

1942 ए लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आर डी बर्मन।

अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में है। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म है प्यासा सावन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनी व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा अथवा भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अथवा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर

0: ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेक दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community.

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष बजपिया। श्रोतो, एक ऐसा खेल जो बच्चों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है और यह खेल बच्चों तक ही सीमित

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्केटिंग की। स्केटिंग न सिर्फ भारत में लोकप्रिय है बल्कि पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। स्केटिंग क्या है और इसे किस तरह खेला जाता है तथा मध्य प्रदेश में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है खेल विशेषज्ञ अमर भटकर जी को। आप स्केटिंग कोच है तथा आपको स्केटिंग का एक लंबा अनुभव है।

0: अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए।
0: अमर जी, आपको स्केटिंग में बहुत लंबे वर्षों का अनुभव है और हम आपसे अगर समझना चाहे स्केटिंग को, तो सरल भाषा में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि स्केटिंग क्या है और इसे किस तरह से खेला जाता है।
1: नॉर्मली समझा जाए तो स्केटिंग एक नॉर्मल सा शूज होता है जिसके अंदर व्हील लगे होते हैं, आपको पहन के चलना होता है, तो एक तरीके से आपको उड़ने का मजा देता है स्केट्स। वो सारे शब्दों में यही है
0: जी,
1: कि जब भी आप स्केट पहनेंगे और चलेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, मजा आएगा।
0: जी जी जी। अब जैसे आपने बात करी स्केटिंग की, तो कितने तरह की स्केटिंग इस समय खेले जा सकते हैं?
1: शुरुआत करने के लिए तो नॉर्मली टेनासिटी स्केट्स आते हैं, लोहे का स्केट होता है, रबर के व्हील होते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा बेटर करते हैं तो क्वार्ट्ज कैटेगरी आ जाती है, ये शू में अटैच होते हैं, दो व्हील आगे दो व्हील पीछे होते हैं। फिर इसके बाद इनलाइन कैटेगरी आ जाती है जिसमें एक ही लाइन में चार व्हील लगे होते हैं, और फिर आइस होता है जिसमें कि ब्लेड लगती है। आइस में व्हील नहीं होके ब्लेड होती है जो आपको लगा के शू में चलाना होता है।
0: जी जी जी।
1: तो ये चार तरह के स्केट्स होते हैं
0: जी। और इनमें किस तरह का कंपटीशन होता है, कंपटीशन की अगर बात करें तो?
1: कंपटीशन तो सर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद डिवीजन लेवल, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, फिर नेशनल प्रतियोगिता काफी होती है, और आजकल तो गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है। बाकी स्कूल लेवल पे सीबीएसई लेवल पे कंपटीशन होता है, एचजीएफआई अपना अलग इवेंट कराता है, और बाकी जो फेडरेशन है रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो भी कराती है, आइस वाले भी अपना कराते हैं, काफी सारे इवेंट है बच्चों के लिए, बहुत सारे ऑप्शन है खेलने के लिए।
0: अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा सबसे ज्यादा स्केटिंग जो है प्रचलित है?
1: भारत में सबसे ज्यादा इनलाइन स्केट चलते हैं, क्योंकि आप इनलाइन स्केट खेलते हो तो आपको इंटरनेशनल इवेंट खेलने को मिलता है। आज की तारीख में सिर्फ इनलाइन स्केट है जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो, और एक आइस स्केटिंग है। बाकी क्वार्ट्ज कैटेगरी अलाउ नहीं है इंडिया के बाहर, वो सिर्फ इंडिया में चलता है।
0: जी जी जी। क्या इसको ओलंपिक में भी शामिल किया गया है स्केटिंग को?
1: सर आइस स्केटिंग तो ओलंपिक में है, लेकिन स्पीड की तैयारी चल रही है, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जरूर स्पीड स्केटिंग भी होगा, रोलर स्केट्स होंगे।
0: जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए और भारत इसमें बहुत अच्छा करे, जैसे कि अन्य खेलों में भारत करता आ रहा है।
1: सर बिल्कुल सर, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है रोलर स्केटिंग करे, काफी अच्छा गेम है। बिल्कुल।
0: तो हम अपने तमाम श्रोताओं को कहना चाहेंगे आप खेल कोई भी हो जरूर उसे अपनाएं, जरूर उसे खेलें, इससे आपकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ेगी और आप एक स्वस्थ जीवन शैली जी सकेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे स्केटिंग की, तो स्केटिंग को शुरू करने की सही उम्र क्या है?
1: वैसे तो कोई भी इवेंट जो चालू होता है वो 6 साल 5 साल के बाद होता है, लेकिन स्केटिंग में हम लोग 2.5 साल के बच्चे को स्केटिंग कराने चालू कर देते हैं, वो काफी अच्छा होता है। एक स्केटिंग ही ऐसा गेम है कि जो सबसे कम उम्र के बच्चों के लिए अलाउ है, अदर गेम में तो वो अंडर 14 चालू करते हैं, लेकिन स्केटिंग एचजीएफआई में अंडर 11 चालू है, और क्या होता है सीबीएसई में अंडर 8 भी है
0: जी,
1: जो कि सिर्फ स्केटिंग है, तो 2.5 साल में बच्चा करना चालू कर देता है स्केटिंग आराम से।
0: जी, अगर कोई स्केटिंग को प्रोफेशनली खेलना चाहे तो उसे कितना वक्त देना चाहिए इस खेल में?
1: सर नॉर्मली स्केटिंग सीखने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं, बैलेंस बन जाता है, आदमी चलाना सीख जाता है, लेकिन अगर उसको आगे इवेंट खेलना है तो उसको एक अच्छे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट होता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है, और जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं होता उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है। तो एक तो इक्विपमेंट बहुत जरूरी है स्केटिंग में, उसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको मेडल लाना है, जो बच्चा साल भर प्रैक्टिस करेगा वही स्टेट में डिविजन लेवल पे कुछ अच्छा कर पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो कुछ पेरेंट्स समझ जाते हैं जो कराते हैं, और कुछ के पास समय की कमी होती है, वो चाहते हैं कि समर में ही सब हो जाए, तो बड़ा

0: असंभव है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी खेल में समय देना बेहद आवश्यक है, और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक रिजल्ट की उम्मीद कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें समय भी अवश्य दे और निश्चित ही इससे रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। अब अमर जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खेलों में कोच की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो स्केटिंग में भी क्या कोच की भूमिका उतनी ही ज़्यादा अहम है जितना कि अन्य खेलों में है?
0: सब बिल्कुल है, सब बिना कोच के मार्गदर्शन के खिलाड़ी उतना अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि कोच के पास अनुभव होता है, उसके बाद से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकले होते हैं, उसने कई सारे इवेंट देखे होते हैं, तो कोच को पता होता है कि कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ क्या होता है। एक अच्छा खिलाड़ी को हमेशा अपने कोच की बात सुननी चाहिए, और हमारे इसमें तो कहा जाता है बिलीव ऑन योर कोच एंड विन मेडल। अगर
1: वाह।
0: आप अपने कोच पर भरोसा नहीं कर सकते तो मेडल लाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जितना खिलाड़ी का नाम होता है उससे कई गुना ज़्यादा कोच का नाम होता है।
1: बिल्कुल
0: खिलाड़ी की जीत कोच के लिए सबसे बड़ा उपहार है, उससे बड़ा
1: बिल्कुल
0: पुरस्कार कुछ नहीं है कोच के लिए। तो मेरा मानना है कि हर खिलाड़ी को अपने कोच के ऊपर भरोसा करना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात की आपने, जैसे कि गुरु जो है मार्गदर्शन देता है, और बिना गुरु के कोई भी चीज को सीख पाना लगभग असंभव है। अमर जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्षों का आपको लंबा अनुभव है, तो आप स्केटिंग में कैसे आए और कब ऐसा लगा कि आपको स्केटिंग को ही एज ए करियर के तौर पे अपनाना चाहिए?
0: सर 2001 में एक जगह देखा बैनर स्केटिंग सिखाते हैं, तो वहाँ मैं गया, वहाँ राहुल भुजाड़े करके सर थे, उन्होंने स्केटिंग चालू करी थी सिखाना, उनसे सीखा सीखा, उसके बाद नेशनल हुए स्केटिंग के, तो मैं गया, तो रोलर हॉकी का नेशनल मैंने खेला, चंडीगढ़ में हुआ था, RSFI की तरफ से, तो खेला। तो उसी दरमियान उनके साथ मैं कॉफ़ी पीने जा रहा था, तो बाइक का फुट रेस्ट खुल रहा था, तो अचानक से मेरा पाँव व्हील में चला गया, जिससे कि
1: ओहो
0: मुझे काफ़ी चोट लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ मंथ तक आप स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं 1 मिनट बाद ठीक होकर ट्रैक पे जाता था, तो राहुल से बोलते तू भी सीखा स्केटिंग जब तू आया है ट्रैक पे, तो सिखाना चालू कर गया और मैं कोच बन गया, फिर मुझे सिखाने में ज़्यादा मज़ा आने लगा।
1: अमर जी, अन्य खेलों में जैसा हमने देखा कि डाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या स्केटिंग में भी जो खिलाड़ी स्केट करते हैं उनको भी अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, और उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए?
0: सर डाइट का पूरा महत्व है, चाहे स्केटिंग हो चाहे कोई भी खेल हो, चीज़ में आपको अच्छी प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। बिल्कुल, आपको अपनी मसल वगैरह सब प्रॉपर गेन करने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर एक अच्छे डाइटिशियन से आपको मार्गदर्शन लेके डाइट लेना चाहिए।
1: जी। अमर जी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया देखकर भी बहुत से लोग नए नए खेल सीखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी खेल को सीखना यह कितना सही है?
0: सर सोशल मीडिया में आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करते हैं, कौन सा वीडियो आप देख रहे हैं, वो कितना अच्छा मार्गदर्शक है, वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, ये आपको प्रॉपर से जानकारी होना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, अगर आप सही चीज़ देख रहे हो और वो फायदेमंद है तो 100% फायदा होगा, लेकिन आप किसी गलत व्यक्ति का वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा नुकसान हो।
1: जी
0: इसके लिए आपको अपने कोच से सलाह तो लेना पड़ेगी कि कौन सही है,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आगे बढ़ना असंभव काम है
1: मतलब
0: सर।
1: विश्वसनीयता की बात करें तो जितना विश्वास आप अपने कोच पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे शायद उतना विश्वास न हो। तो हम यही सलाह देंगे कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज करते हैं तो अपने कोच के मार्गदर्शन में करें,
0: बिल्कुल
1: वही
0: सर,
1: आपको एक
0: बिल्कुल
1: सही रास्ता दिखाएगा। अमर जी, स्केटिंग करते वक्त किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या लेने चाहिए किसी भी बच्चों को या खिलाड़ियों को, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई कोई नुकसान ना हो?
0: सर, मैं तो हर खिलाड़ी को बोलता हूँ कि सबसे पहले हेलमेट पहने, स्केट बाद में पहने, और सबसे पहले स्केट उतारे, हेलमेट सबसे लास्ट में उतारे, क्योंकि आप स्केटिंग ऐसा गेम है जिसमें आप गिरते हो, चोट लगती है, आपको फ्रैक्चर होता है, आप गिरते हो, चोट लगती है। मेरा मानना है आपके हाथ में चोट लग जाए, पाँव में चोट लग जाए, सब चलेगा, लेकिन आपके हेड को सेफ रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हेड इंजरी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो हर अपने स्केटर को बोलता हूँ सबसे पहले हेलमेट बेस्ट क्वालिटी का खरीदे। वैसे तो हम जो छोटे स्केटर होते हैं उनको नी गार्ड, एल्बो गार्ड, रिस्ट गार्ड कंपलसरी करते हैं, लेकिन हाँ जो बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर हम उन्हें सिर्फ हेलमेट कंपलसरी करते हैं, क्योंकि वो एल्बो गार्ड रिस्ट गार्ड पहनते हैं तो उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो हमें नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, और नेशनल लेवल पर गार्ड्स में ओनली हेलमेट अलाउ है, अदर गार्ड्स अलाउ भी नहीं है। तो हेलमेट तो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, छोटे बच्चे जो स्टार्ट करते हैं तो उनको पूरे गार्ड पहनने ही चाहिए।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे अमर जी कि मध्य प्रदेश में स्केटिंग की क्या संभावनाएं नजर आती है आपको?
0: सर मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, और बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले स्कूलों में स्केटिंग नहीं हुआ करता था, लेकिन आज मेरा मानना है कि भोपाल के 80% स्कूलों में स्केटिंग चालू हो गया है। भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में स्केटिंग चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्कूल वाले भी काफ़ी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को बाहर जाते हैं इवेंट खेलने,

0: तो उनको काफ़ी मदद करते हैं, बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको पुरस्कार भी देते हैं। तो उसका डेवलपमेंट तो है काफ़ी पहले से, क्योंकि पहले स्केटिंग के गार्ड भी मुझे इंदौर से लाना पड़ते थे, हर चीज़ भोपाल में अवेलेबल है।
1: अमर जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को, उन बच्चों को जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं स्केटिंग में?
0: सर मेरा कहना है जो बच्चे स्केटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, देखिए सर कोई भी खेल है ना, खिलाड़ी, पेरेंट्स और कोच, इन तीनों से ही संभव हो पाएगा। अगर तीनों का सहयोग होगा तो ही कोई चैंपियन बन पाएगा। मान लीजिए खिलाड़ी और कोच तैयार है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। मान लीजिए पेरेंट्स और कोच तैयार है, खिलाड़ी तैयार नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए पेरेंट्स और खिलाड़ी तैयार है लेकिन कोच अच्छा नहीं है तो नहीं। तो इन तीनों के सहयोग से एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो मेरा कहना है पेरेंट्स कि उस बच्चे को समय दे, हर इवेंट में पार्टिसिपेट कराए, जीतने के लिए ही इवेंट ना खेले। पार्टिसिपेशन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि यार बच्चा मेडल नहीं लाता क्यों ले जाए, लेकिन जब वो दो चार बार जाएगा तभी तो उसको समझ में आएगा कि मेडल के लिए कितनी मेहनत करनी है, और मेहनत पूरी करना पड़ेगी सर, तभी अपना भविष्य बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि आपको हर जगह सक्सेस मिले। कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते, पर आप एक चीजें जो सीखते हैं उससे हैं, वही आपको एक सक्सेस की दिशा, एक सक्सेस की राह दिखाती है। तो आपने जैसे बात की, हम तमाम अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करें, और उनको जितना सपोर्ट हो सकता उतना सपोर्ट करें। अमर जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आपने मध्य प्रदेश में स्केटिंग की संभावनाएं विषय पर अमर भटकर जी से यह बातचीत सुनी। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
5: यह था कार्यक्रम खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अमानत फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना साहिर की और संगीतकार रवि।

मोहम्मद रफ़ीक का इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओ, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खैमरिया। फरमाइशी पत्रों के साथ ये पहला पत्र जो मेरे हाथ में है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से, लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमाली वैशाली, वैष्णवी, अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार बंडा से, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। आप सभी ने फरमाइश की है कर्मा फिल्म के गीत की। किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अगली फरमाइश की है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। कवर कॉलोनी बड़वा से फरमाइश करते हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। आप सभी श्रोता सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में जानी दुश्मन फिल्म का गीत। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यादों के मौसम इस फिल्म के गीत के लिए फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजेश राजदीप, राजेश राशि, राजेश श्रीमती शीतल, राजेश महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से फरमाइश की है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए यादों के मौसम फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। सलाहुद्दीन परवेज ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत से संवारा है आनंद मिलिंद ने।

करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से फरमाइश की है हुलासराम कटरे नानेश्वरी कटरे। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर शंकर लाल माखीजा राहुल माखीजा शरद कुमार डोडवानी दीपक हीरालाल धनशानी श्रीमती सविता माखीजा बेबी स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। बटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार आप सभी सुनना चाहते हैं ज़बरदस्त फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश चरस फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिक, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया रीत और ऋषभ राजावत। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। अगली फरमाइश है गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले की।
1: गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट।

इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अमरीश कालेले का गिटार वादन, राग है गावती। तबले पर संगत की है सलीम अल्लावाले ने।

0: अभी आपने अंबरीश कालेले का गिटार वादन सुना। राग था गावती। तबले पर संगत की थी सलीम अल्लाह वाले ने। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि

0: देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Ki Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
1: We will be building on the things that we've already worked on. So, free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So, there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism.